आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें

0: जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: आज का चिंतन।

आचार्य चाणक्य का कथन है कि अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहें, क्योंकि संगति का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान सुनिएगा, भाग 182। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिएगा संगीत सरिता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना झोकरकर। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनिएगा। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सवनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए भाग 27।

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, 11 बजे सुनिए रंग तरंग, 12 बजे हिंदी समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर और 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, भाग 27 आज। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। गीतों भरी कहानी में आज सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका स्वर और स्वर ममता सिंह का है, संपादन सहायक काजल बदरंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने।

शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत सुनेगा कार्यक्रम विवरण। शाम 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता, हवा महल में रात 8 सुनिए नाटिका रिजल्ट का चक्कर, लेखक हरीश दीक्षित, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर, 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। आपको फिर से बता दें, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और 11 सुनिए रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगर वासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। कल्पना जी, क्या आज की इस कड़ी को वीणा सहस्त्रबुद्धि के लिए रखा जाए? अगर आप कहें
2: बिल्कुल
1: तो।
2: जरूर विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धि जी, आप वैसे कानपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने पिताजी पंडित शंकर राव बोडस एवं उनके बड़े भाई पंडित काशीनाथ बोडस जी से शिक्षा प्राप्त की संगीत की, जो पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। और उसके अलावा भी उन्होंने पंडित बलवंत राय भट्ट जी, वसंत ठकार जी, पंडित गजानन राव जोशी जी, गाना सरस्वती श्रीमती किशोरी अमोनकर जी आदि से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनकी गायकी में इसीलिए ग्वालियर किराना जयपुर घराने की गायकी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और गांधर्व महाविद्यालय के लिए भी बहुत काम किया, उन्हें गांधर्व मंडल की ओर से संगीत महोपाध्याय की पदवी से भी विभूषित किया और इतनी उत्तम रचनाएं उन्होंने बनाई हैं
1: जी।
2: तो वीणा जी की एक रचना मैं गाकर आपको सुनाती हूँ, भोपाल तोड़ी राग जो सुबह का राग है, एक बंदिश है वो मैं आपको सुनाती हूँ।
1: स्वागत है।
2: जो मध्यलय

0: नैनीताल में है। तो पहले मैं आपको भोपाल तोड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं हमारे सुनने वालों के लिए। तो भोपाल तोड़ी ये राग भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ है और तोड़ी अंग से गाया जाता है। इसकी जाति जो है वो औडव है, मध्यम इसमें और निषाद ये दोनों स्वर वर्जित है
1: जी।
0: रे ग ध इसमें कोमल लगते हैं। दिन का पहला प्रहर इसका समय है और वादी इसका धैवत एवं संवादी गंधार है। भक्ति भाव से ओतप्रोत यह राग बहुत ही सुंदर और सुबह के समय तो बहुत ही आनंददायक होता है।
1: तो अब कौन सी बंदिश आप प्रस्तुत करेंगे?
0: आदरणीय वीणाताई ने बनाई हुई द्रुत तीन ताल में एक बंदिश मैं आपको सुनाती हूँ। तुम बिन कौन सहाय या जग में दूसरों न को

0: वाह बहुत सुंदर। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धि की इस बंदिश को बड़ी ही सुंदरता से आपने प्रस्तुत किया कल्पना जी, और इस रचना को सुनते हुए हमारा मन भक्ति भाव के सागर में हिलोरे ले रहा था। और अब बताइए कि अब कौन सी रचना आप प्रस्तुत करेंगे या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: अब मैं वीणा ताई के आवाज में और उन्होंने बनाई हुई रचना राग दुर्गा में विलंबित एक ताल का एक ख्याल सुनवाना चाहूंगी।
0: प्रस्तुत है जी ये रचना।

0: आज की इस कड़ी में हम जानकारी दे रहे थे विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के बारे में और उनकी बंदिशें सुनवाई। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये कड़ी भी बहुत पसंद आएगी और कल की कड़ी में कुछ और जानकारी, कुछ और बातें हम लेकर उपस्थित होंगे। कल्पना जी, आपको धन्यवाद। अब हम यहाँ पर विदा लेते हैं आज की इस कड़ी में। नमस्कार।
1: नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से।

अनोखी अदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद अली ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का ये गीत। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है।

0: सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उमा देवी की आवाज में चंद्रलेखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे एस राजेश्वर राव। लीजिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सुनिए नदिया के पार फिल्म का गाना। शमशाद बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
1: नन्नी सी जा

0: है दर्द क्यों?
1: हाँ आप कहे कोई, नशे में है दर्द क्यों?
2: ये इसलिए के जिंदगी

0: मिलने की तमन्ना है मगर मिलते नहीं है क्यों।
1: हम भी तो सुने, क्यों नहीं मिलते?
2: ये इसलिए के दिल पे दिल निसार किया जा

0: मैं क्यों?
1: हाँ भाई, फिर ये बेबसी क्यों?
2: ये इसलिए कि इश्क का इजहार किया जाए।

शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में नदिया के पार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसे संगीत से संवारा था सी रामचंद्र ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

साथियों, इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने गजरे फिल्म से लिया था। सुरैया की आवाज थी और इसे लिखा था गोपाल सिंह नेपाली ने और संगीत से संवारा था अनिल विश्वास ने। अभी जो गीत आप सुन रहे थे इसे भी सुरैया ने गाया था और सिंगार फिल्म का गीत था। डी एन मधोक की रचना थी और संगीतकार थे खुर्शीद अनवर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। आपके लिए एक विशेष सूचना है, सुनिए श्रोताओं। जैसा कि

अब जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 बरस पूरे होने को हैं। इस मौके पर आज यानी 8 मई को वॉकथॉन का आयोजन विविध भारती के द्वारा किया जा रहा है। इस वॉकथॉन के लिए आप सब जमा होंगे शाम को 5 बजे गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड यानी शिवाजी महाराज ग्राउंड के सामने, और वहां से विविध भारती तक एक वॉक किया जाएगा जिसमें विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लोगों से मुलाकात की जाएगी। तो आप जरूर आइएगा गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड के सामने शाम को 5 बजे। अब सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप लाडली फिल्म का गीत सुन रहे थे। इसे बहजाद लखनवी ने लिखा था और अनिल विश्वास ने इस गीत को संगीत से संवारा था।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: ये हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: अब आज का हमारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

कर्ज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में लीजिए ये सुनिए ना खुदा फिल्म का गीत।

ना खुदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाजें थी, निदा फाजली के बोल थे और खयाम की तर्ज थी। हम है राही प्यार की कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। खूबसूरत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है।

0: प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें मोहम्मद रफी आशा भोसले की थी। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी की धुन थी। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 बरस पूरे होने को हैं, इस मौके पर आज यानी 8 मई को एक वॉकथॉन का आयोजन विविध भारती के द्वारा किया जा रहा है। इस वॉकथॉन के लिए हम सब जमा होंगे शाम को 5 बजे गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड यानी शिवाजी महाराज ग्राउंड के सामने, और वहां से विविध भारती तक एक वॉक किया जाएगा जिसमें विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लोगों से मुलाकात की जाएगी। तो आप जरूर आइएगा गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड के सामने शाम को 5 बजे। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूँ।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में लीजिए सुनिए हम 5 फिल्म का गाना।

5 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने के सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सवेरे के 8 बजने को है कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक

0: हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इंपॉर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीतिक

0: का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य

0: और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है। इस समय सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत लीजिए करते हैं सिंघम फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें श्रेया घोषाल और अजय की। इस गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई है अजय अतुल ने।

मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में। बोल है इरशाद कामिल के और धुन बनाई है प्रीतम ने।

रेडी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

0: हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, आप सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: आकाशवाणी जोधपुर का आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और आपके साथ जुड़ चुका है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और नमस्कार में बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस अंक में जो कि है 8 मई का अंक। और बहुत सारी बातें शुरू करें उससे पहले परिचय करवा देते हैं आपसे आज की क्रिएटिव टीम का। इस वक्त ट्रांसमीटर पर मौजूद हैं पारसपुरी गोस्वामी और सीएल सोनी, वहीं कंट्रोल रूम में तकनीकी सहयोग दे रहे हैं प्रवीण कुमार।
0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी श्रोताओं हमारे साथ हैं जयश्री राठी और एफएम चैनल पर है कविता सांखला।
1: कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने और नमस्कार की प्रस्तुति है संजय व्यास की।
0: और इसी के साथ श्रोताओं मैं हूं आपके साथ सोफिया खान
1: और मैं स्वाति भंसाली। बहुत सारी बातें आज शेयर करेंगे और खूबसूरत गीत भी आपको सुनवाएंगे। तो इस वक्त जो अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है वो बहुत ही प्यारा सा है या प्यारी सी है।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: दोस्तों आज एक नया दिन, नई स्ट्रेंथ और नए थॉट्स यानी विचारों के साथ आपका दिन जो है वो शुरू कीजिए, क्योंकि विचार अच्छे होंगे तो दिन खुद ब खुद अच्छा होगा।
1: बिल्कुल, और जब दिन अच्छा हो जाएगा तो फिर आपकी जो शाम है वो भी खूबसूरत हो जाएगी, रात सुहानी होगी, तो फिर अगली सुबह फिर से एक नई उमंग और नई खुशी लेकर आएगी। बिल्कुल, तो इसी तरह से ये जो पॉजिटिविटी है वो हमारी लाइफ में जब जुड़ती है तो हम दूसरों की लाइफ तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और सोचिए ना, जब ये पॉजिटिविटी निखर कर आती है तो दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल, और जब दुनिया खूबसूरत लगने लगती है तो जो गाने हमें सुनाई देते हैं वो भी तो सीधा दिल तक यानी कि हमारे रूह तक पहुँच जाते हैं। तो अगला गाना अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज़ में फिल्म भूत बंगला से तू ही दस्ता।

0: फिल्म भूत बंगला के इस गाने में अरिजीत सिंह का साथ दिया था निकिता गांधी ने। और वैसे अरिजीत सिंह तो एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर तो है ही, हालांकि उन्होंने प्लेबैक से संन्यास ले लिया है, लेकिन जितने गाने उन्होंने गाए हैं वो अपने आप में इतने दिल को सुकून देने वाले थे। और अलग अलग फीमेल सिंगर्स के साथ भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन किया है। वैसे देखो ना, कई बार ऐसा होता है फिल्म जगत में भी बहुत सारी जोड़ियाँ बन जाती हैं, हिट भी हो जाती हैं, लेकिन बदलाव जो है वो हमेशा, चाहे हमारे श्रोता हों चाहे फिल्मों के ऑडियंस हो, सबको हमेशा अच्छे लगते हैं, है ना सोफिया?
1: बिल्कुल, और बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हर कोई जो है बदलाव से डरता है कि अगर ये बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन कभी कभी जीवन में हम उस मोड़ पर होते हैं जब बदलाव जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल, और बदलाव से एक बात तो है कि लाइफ में फ्रेशनेस भी आती है। जैसे हमारे नमस्कार प्रोग्राम में भी रोज हमारे अलग अलग प्रेजेंटर्स हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, श्रोताओं तक, तो जो बात है उसमें भी वेरिएशन भी आता है और उस बात की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमेशा एक जैसी भी अच्छी लगती हैं, जैसे सूरज रोज पूर्व दिशा से निकलता है, पश्चिम अस्त होता है, तो ये अपने आप में एक कंफर्म चीज है। वैसे ही अगर अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की जोड़ी की बात करें तो अभी जो गाना हमने सुनवाया भूत बंगला फिल्म से वो तो खूबसूरत था ही, लेकिन जो अगला

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
3: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: कौन जावन दे, कितना ही खूबसूरत गीत इस वक्त आपके साथ आपके रेडियो सेट पे बना हुआ था मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और जब आवन जावन की बात आती है तो देखिए मौसम भी तो हमारा कभी आता है कभी जाता है, कभी गर्मी है कहीं बरसात है। और जैसे अरिजीत सिंह की ये खूबसूरत जो आवाज़ थी निकिता गांधी के साथ, तो इसने बाहर की इस तपिश भरे मौसम में भी दिल को एक अलग ही ठंडक पहुँचाई है। और हमारे राजस्थान का मौसम तो इस वक्त शायद जितनी भौगोलिक और सांस्कृतिक तरह से विविधताएं हमारे भारत में दिखाई देती हैं उतनी सिर्फ हमें राजस्थान में दिखाई दे रही है मौसम की विविधता।
1: बिल्कुल, मौसम में विविधता दिखाई दे रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं तो कहीं पे पारा है 44 पार।
0: बिल्कुल,
1: और ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है स्वाति जी, तो देखा जाए तो आज भी कई जिलों में जो है वो आंधी और बारिश का अलर्ट है, हीट वेव का दौर चल रहा है और कहीं ओले भी गिर रहे हैं। हाँ। तो आज यहाँ हीट वेव का जो अलर्ट बताया है वो है अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में। यहाँ जो है बारिश का भी अलर्ट जो है वो जारी किया है, यानी यहाँ का मौसम जी

0: जो है वो ठंडा होने वाला है।
1: बिल्कुल, लेकिन जब राजस्थान की बात सुनते हैं और राजस्थान के मौसम की बात सुनते हैं तो आमतौर पर सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में भी लोगों को रेगिस्तान और ऊंट नजर आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे राजस्थान में भी यहाँ कुछ जगह पे ओले गिर रहे हैं तो वहीं जंगल भी हैं, वहीं जहां मुकंदरा और रणथंभौर के रिजर्व्स भी हैं, टाइगर रिजर्व, तो वहीं पर नदियां भी हैं, सुहावना मौसम भी है, हरियाली भी है, तो एक अलग ही तरह का ठंडक और एहसास जो सुकून का है वो दिलों में उतर जाता है जब इस तपिश भरे मौसम में किसी पेड़ की ठंडी छाँव मिल जाती है। और ऐसी ही ठंडी छाँव मिलती है हमारी बातों के बीच में सुकून भरे गानों से। तो आइए मेट्रो इंधनों का खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

सुहावना मौसम भी है, हरियाली भी है, तो एक अलग ही तरह का ठंडक और एहसास जो सुकून का है वो दिलों में उतर जाता है जब इस तपिश भरे मौसम में किसी पेड़ की ठंडी छांव मिल जाती है। और ऐसी ही ठंडी छांव मिलती है हमारी बातों के बीच में सुकून भरे गानों से। तो आइए मेट्रो इन दिनों का खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

0: श्रोताओं कहते हैं कि बीते समय का पछतावा और आने वाले समय की चिंता, ये दो ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारा वर्तमान जो है, हमारा प्रेजेंट जो है वो खराब हो जाता है। इसीलिए जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो आने वाला है उसकी तैयारी हम करें, उसके लिए हम अपडेट रहें, और जो हमारा वर्तमान है उसे हम अगर अच्छी तरह से जिए तो आज का दिन भी अच्छा होगा और आने वाले दिन भी अच्छे होंगे।
1: बिल्कुल, तो इस वक्त हमारा जो वर्तमान है वो क्या है, क्योंकि आप सभी श्रोता और जितने भी लिसनर्स हैं वो सब जुड़े हुए हैं इस वक्त मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ, और हम भी आप तक अपनी तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए तैयारी भी करते हैं और हर दिन एक नई खूबसूरत जो बात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल, हमारा दिन तो अच्छा जाता ही है और आप सभी लिसनर्स का दिन भी अच्छा जाता हो, यही हमारी शुभकामनाएं रहती हैं। और वैसे हर दिन जब नमस्कार आपके साथ नई नई बातें शेयर करता है तो नए नए गाने भी आपको सुनवाता है। इस वक्त गाने नए नवेले में जो अगला गीत आपका इंतजार कर रहा है वो है साल 2016 में आई फिल्म तुम बिन टू का, आवाज फिर से अरिजीत सिंह की, लेकिन इस बार साथ दिया है उनका तुलसी कुमार ने। देख लेना ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम इस वक्त ट्यून्ड है आपके साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं सुबह के 9। हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे नमस्कार कार्यक्रम में ठीक 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: जयपुर अजमेर है, अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग तीन गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से शुरू हुए दो दिन के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर सैन्य स्टेशन में हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। इस फिल्म में आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पाकिस्तान की नीति को उजागर किया गया है। वहीं 26/11 मुंबई हमलों और पहलगाम आतंकी हमलों की घटनाओं को दिखाया गया है। सम्मेलन के पहले दिन भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर नए सिद्धांत भी जारी किए गए। वहीं आज रक्षा मंत्री सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भविष्य की युद्ध रणनीतियों और तीनों सेनाओं की संयुक्तता तथा तालमेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण और नागरिक सैन्य सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। इसमें थिएटर कमान के गठन की भी समीक्षा की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सीकर जिले के खंडेला में ग्राम विकास चौपाल लगाई। जाजोद गांव में लगी इस चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश मजबूत बनेगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से फलों की खेती और नवाचार करने के बारे में भी चर्चा की।
2: हमको फलों की खेती भी करनी चाहिए क्योंकि अनुभव होता है फलों की, जब खेती हम करते हैं तो एक प्रफुल्लता भी आती है मन में। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम फल दे रहा है, तो आप कहीं भी रिश्तेदारी में भेजोगे तो कहोगे मेरा खेत का आम है, तो आपको 10-20-50 पेड़ हर किसान को अपने फलों के लगाने चाहिए जिससे कि वो ये महसूस करे कि ये फल तो मेरे घर का है, तो ये भी मैं आप दो, पर्यावरण भी बचेगा और हमारा फल भी पैदा होगा। हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए।
0: राजस्थान को कृषि नवाचार और खेती की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने के लिए जयपुर में 23 मई से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एग्री बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक में निवेश के लिए कृषि विभाग की ओर से देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हैदराबाद में ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल तथा पशुपालन मंत्री जोरा राम कुमावत का भी इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ग्राम 2026 से

0: किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सांचौर के चितलवाना में कहा कि इस अभियान में सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्र लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है।
1: अपने विकास के कार्यों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से जमीन तक जागरूकता और बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं उनको और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचा सके।
0: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कल SBI पल्लू शाखा में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 162 फर्जी किसानों के नाम पर बीमा करने का खुलासा किया। गौरतलब है कि कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रूपये की बीमा क्लेम राशि जारी होने से पहले ही रोक दी गई। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ रूपये की बीमा भुगतान राशि को समय रहते ही रोक दिया गया।
2: जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट दिया और क्लेम कैसे बना दिया? बिना जमाबंदी बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा कर क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था उससे पहले हमारी जानकारी आ गया। इस चक्र में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बजरू तेजपुरा रजनीत तस्वीर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से देश में खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सवाई माधोपुर, वनस्थली, जालौर और दौसा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक, करौली और कोटपुतली बहरोड में ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, किंतु अधिकतर स्थानों पर तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे। भरतपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में देर शाम धूल भरी हवाएं चलने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर में फिर से प्रचंड गर्मी का असर शुरू हो गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया, वहीं 15 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में अब कमी होने की संभावना है। इससे अगले 3-4 दिन में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती जिलों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों, पुलिस आयुक्तालय, ACB, CIDCB, ट्रैफिक और महिला अपराध अनुसंधान सेल में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ। ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा।

0: हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार में। और नमस्कार कार्यक्रम में अब जानते हैं एक जरूरी सूचना के बारे में। ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण और जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट पंप हाउस पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव और सफाई के लिए 10 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस को श्रोताओं सभी क्षेत्रों में जो जलापूर्ति है वो बंद रहेगी। और ये जो जलापूर्ति है सभी क्षेत्रों में 10 मई को जो होने वाली जलापूर्ति है वो 11 मई को और 11 मई को जो होने वाली जलापूर्ति है वो 12 मई को की जाएगी।
1: और ये जो जलापूर्ति है वो जोधपुर शहर के कायलाना चौपासी और सूरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में होगी। वहीं पर झालामन और तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं सरस्वती नगर और कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के अलग अलग सेक्टर और पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास के क्षेत्रों में 10 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी और इन क्षेत्रों में 11 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 12 मई को और 12 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 13 मई को होगी। सूचना समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर आप और हम बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ। और नमस्कार में अब बारी है इतिहास के आईने में झांकने की। तो आज का दिन किस तरह से दिखाई देता है, आइए जानते हैं। मई सन 1541, ये वो दिन था जब मिसिसिपी नदी की खोज की गई थी हर्नांडो दे सोटो के द्वारा। सन 1847 में रॉबर्ट डब्ल्यू थॉमसन ने आज ही के दिन रबर टायर का पेटेंट करवाया था।
1: और 1945 में श्रोताओं, आज के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी के साथ यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तब से हर साल यूरोप में विक्ट्री ऑफ यूरोप डे के रूप में मनाया जाता है। और 1933 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ 21 दिन का उपवास जो है वो शुरू किया था। ১৯৮০ में श्रोताओं, आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की थी। और आज के दिन 2004 में श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था।
0: और आज का जो खास दिन है यानी कि 8 मई का दिन, ये मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में। वैसे थैलेसीमिया रोग जो है ये अनुवांशिक बीमारी होती है और सोचे ना पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकती है। शिशु के जन्म के साथ ही ये बीमारी होती है और ये उम्र भर साथ नहीं छोड़ती है। सोचे ना क्या हालत होती है कि जब माता पिता से संतान को ये बीमारी ट्रांसफर होती है और इस बीमारी से ग्रस्त शरीर में लाल रक्त कण बनने बंद हो जाते हैं और बार बार खून चढ़ाना पड़ता है क्योंकि रक्त की कमी हो जाती है। और अपने आप में ये एक बहुत ही मुश्किल जो भरी जिंदगी है उसको एक न्योता देने वाली बीमारी है।
1: और श्रोताओं, साल 1994 में इस दिन की स्थापना सबसे पहले थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन यानी TTF के संस्थापक पेनोस एग्लेजोंस ने अपने बेटे जॉर्ज की याद में की थी जिसकी थैलेसीमिया से मृत्यु हो गई थी। और श्रोताओं, थैलेसीमिया में जैसा कि बताया हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है जिससे हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है। और इसके लक्षणों की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो उसमें है थकान, कमजोरी और शारीरिक विकास जो है वो रुक जाना। और इसके स्थायी इलाज की अगर हम बात करें तो उसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा कम उम्र में अगर BMT यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए तो ये उपचार जो है वो ज़्यादा सफल हो जाता है।
0: लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी भी बीमारी की रोकथाम पहले ही कर दी जाए तो वो उपचार से भी ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। तो अगर थैलेसीमिया की रोकथाम करनी है तो क्या करवाना है? जब भी शादी हो रही हो तो कुंडली जिस तरह

से मिलाई जाती है, उस तरह से अगर ब्लड ग्रुप का टेस्ट भी करवाया जाए तो फिर ब्लड ग्रुप की जांच के साथ अगर काउंसलिंग हो तो जिंदगियां बच सकती है और ये जो थैलेसीमिया है ये अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होने से बच सकता है। तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है और शादी से पहले अगर लड़का लड़की दोनों की ही थैलेसीमिया जांच करवा ली जाए तो ये जो थैलेसीमिया है ये अपने आप में रोकने के लिए ये एक बहुत कारगर उपाय होता है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद थैलेसीमिया माइनर होते हैं लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और इसीलिए वे अनजान रहते हैं कि वे थैलेसीमिया माइनर हैं। लेकिन जब शादी होती है तो ऐसे में वो दोनों करियर बन जाते हैं, माता और पिता, और ये थैलेसीमिया जो है वो बच्चों तक ट्रांसफर होता है और वो बच्चे जिंदगी भर इस परेशानी से जो है वो ग्रसित रहते हैं। हर 15 दिन में उन्हें खून चढ़वाना पड़ता है, उनका वजन और लंबाई भी प्रभावित होती है, शरीर में कमजोरी और थकान भी रहती है। तो फिर बहुत जरूरी है कि जो माता और पिता हैं वो थैलेसीमिया अगर माइनर हो तो अपने आप की पहले जांच करवाएं, शादी से पहले कुंडली से भी पहले ब्लड ग्रुप की जांच करवाएं तो इसको रोका जा सकता है। तो इस तरह की बातें और भी आपसे शेयर करते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: और श्रोताओं, आज दुनिया सलाम कर रही है उन हाथों को जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में जुटे हैं। बिल्कुल, आज 8 मई है और आज दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाया जाता है। मकसद है इसका बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करना।
1: बिल्कुल, और वैसे अगर हम विश्व के जितने भी देश हैं वो किसी एक विचार पर अगर सहमत माने जाते हैं तो वो विचार है रेड क्रॉस का विचार। खासतौर पर युद्ध के मैदान में जितने भी घायल सैनिक हैं उनके चिकित्सा के लिए, प्रकृति के महाविनाश के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की आपदा हो उसमें भी हमेशा घायलों की सहायता के लिए डटा रहता है रेड क्रॉस।
0: और ये दिन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ICRC के संस्थापक हेनरी डुनांट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस की अगर हम बात करें तो वो 8 मई 1948 को मनाया गया था।
1: लेकिन जो हेनरी ड्यूनेंट है उनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 में, और तब इन्होंने जो है बिना भेदभाव के पीड़ित मानवता की सेवा करने का विचार दिया था और रेडक्रॉस अभियान को जन्म दिया था। और अपने आप में ये वैसे जो हेनरी ड्यूनेंट थे वो बचपन से ही घायलों को देखकर द्रवित हो जाते थे। उनका दिल जो था वो हमेशा से घायलों की सहायता करने को तत्पर रहता था और उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया और इसीलिए सन 1901 में उनके मानव सेवा कार्यों के लिए इन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था।
0: और कहा जाता है कि 1984 में इसे विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के रूप में मनाया जाने लगा। और श्रोताओं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम चाहे किसी भी देश किसी भी धर्म के हो लेकिन सबसे पहले हम इंसान है
1: और अगर इंसान है तो जिंदगी अगर मिलके बिताएंगे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, इस गीत के माध्यम से जानते हैं।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: किताब में हम बात करेंगे आज महाकवि दंडी द्वारा रचित संस्कृत साहित्य की कृति दश कुमार चरित की। श्रोताओं, इसका शाब्दिक अर्थ है दस कुमारों का चरित्र, यानी इसमें मगध के राजकुमार राजवाहन और उनके नौ साथियों की साहसिक यात्राओं और उनके अनुभवों का वर्णन है।
3: बिल्कुल, और ये जो दस कुमार थे, इनके नाम राजवाहन, अपहार वर्मन, उपहार वर्मन, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत, सोमदत्त और पुष्पोद्धव। ये दसों कुमार अलग अलग दिशाओं में जाते हैं यात्रा के लिए, अलग अलग और विचित्र अनुभव पाते हैं, प्रेम में पड़ते हैं और फिर अंत में सभी एक साथ मिलते हैं। और किस तरह की थी इनकी यात्राएं और किस तरह के इनके अनुभव रहे, वो अपने आप में दस कुमार चरित्र को एक बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही संस्मरणात्मक एक चरित्र बनाते ही हैं। साथ ही साथ इसमें जितने भी वर्णन हैं वो अपने पद लालित्य के लिए और साथ ही साथ तत्कालीन समाज के यथार्थवादी चित्रण के लिए भी जानी जाती है।
2: और इस जो ग्रंथ की बात कर रहे हैं हम, तो ये ग्रंथ जो है वो तीन भागों में विभाजित है। जैसे पूर्व पीठिका, जिसमें इसमें कुमारों के जन्म, उनकी शिक्षा, उनके बिछड़ने की कथा है, और दस कुमार चरित्र यानी उसका जो मुख्य भाग, इसमें आठ कुमारों के अलग अलग अनुभवों का वर्णन है। और उत्तर पीठिका ये ग्रंथ का समापन का भाग है, जिसे बाद के लेखकों द्वारा पूर्ण किया गया माना जाता है।
3: बिल्कुल, और जो इसका अंतिम भाग है उसमें विश्रुत की कहानी से के माध्यम से पूरे जो इसमें शासन व्यवस्था थी उस पर भी प्रकाश डाला गया है। वैसे दंडी की ये प्रारंभिक रचना मानी जाती है, लेकिन इसको संस्कृत का पहला गद्य काव्य भी माना जाता है दंडी का। और छठी और सातवीं शताब्दी में जब इन्होंने संस्कृत गद्य काव्य की रचना की थी तो अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक बात और थी कि जिस तरह से

0: ने वर्णन किया है, ऐसा लगता है वो सारी घटनाएं हमारे सामने ही घट रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यथार्थवादी चित्रण तो है ही, चाहे उस समय के समाज का हो या कूटनीति का हो। और उसके साथ ही कई जगह पर उन्होंने व्यंग्यात्मक चित्रण किया है, जो अपने आप में उनके संस्कृत जो साहित्य की रचना की विलक्षणता है उसको भी दर्शाती है। राजाओं, मंत्रियों और आम नागरिकों के जीवन का भी जीवंत विवरण है, और समाज में जो उस समय पर व्याप्त भ्रष्टता थी उस पर भी दर्श कुमार चारित एक करारा व्यंग करता है। वैसे दंडी की भाषा थोड़ी जटिल मानी जाती है, लेकिन आकर्षक भी है, पात्रों की चतुराई को भी दर्शाती है और साहस को भी बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने ला कर रखती है।
1: और दंडी ने इसमें श्रृंगार, हास्य और अद्भुत रसों का ऐसा संरक्षण किया है कि आज भी ये पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
0: तो बिल्कुल, अगर आपको भी मौका मिले तो बिल्कुल मत चूकिएगा महाकवि दंडी द्वारा रचित दर्श कुमार चरित को पढ़ने से। उस समय की समाज व्यवस्था को जानने का ये एक बहुत ही अनोखा माध्यम है, और जब इसे पढ़ेंगे तो अपने आप को उसी कालखंड में पाएंगे, इसमें डूब जाएंगे गहरे तक। लेकिन हाँ, इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, उसको आराम से आप आज की तारीख में पढ़ सकते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उस समय की जो खूबसूरत बातें हैं उनको भी अपने जीवन में अगर आप उतार पाएं और उस समय के समाज से कुछ सीख कर आज के समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर पाएं, तो वही इस रचना की सार्थकता होगी। तो बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर, और सुनिए ये प्यारा सा खूबसूरत गीत जो कि है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ,
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है?

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: और श्रोताओं, शहर में स्पेशल की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस सप्ताह जो है वो शुरू हो चुका है रक्तदान से।
1: और बिल्कुल, अब जो ये हम काम की बात कर रहे हैं, नर्सेस की जब बात आई है तो एक बात और सामने आती है प्राथमिक चिकित्सा की। वैसे तो हम अपने घर पे भी फर्स्ट एड हमेशा तैयार रखते हैं और आज खास तौर पर जब रेड क्रॉस डे है, थैलेसीमिया डे है, तो जो हमारा खून है यानी रक्त है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी को बचाने में। और जब भी कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम रक्त का प्रवाह हो रहा है तो उसको रोक लें और जो मरीज है उसका प्राथमिक उपचार कर लें। तो ऐसे में आप अपने घर पे भी किट रख सकते हैं और आसपास जो भी नर्स की तुरंत सेवा मिले या कंपाउंडर की सेवा मिले तो सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर उसको अवेल कर सकते हैं। तो अगर हम प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य घटकों की बात करें तो उसमें सबसे मुख्य है 3P। पहला, प्रिजर्व लाइफ यानी हमारे जीवन को बचाना। दूसरा, प्रिवेंट फर्दर हार्म यानी कि स्थिति को बिगड़ने से रोकना। और तीसरा है टू प्रमोट रिकवरी यानी कि ठीक होने में सहायता करना। और इसके अलावा एक अच्छा प्राथमिक चिकित्सा किट जो आप हमेशा अपने घर में रख सकते हैं और आपातकालीन स्थिति का जो त्वरित आकलन किया जाता है यानी असेसमेंट किया जाता है वो भी इसके अनिवार्य हिस्से बनते हैं।
0: और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होता है उसमें पट्टियाँ, रोगाणुरहित और एंटीसेप्टिक वाइप्स होते हैं, कैंची होती है, दस्ताने होते हैं, थर्मामीटर होते हैं, जो कि हमें प्राथमिक उपचार में बहुत ही सहायता करते हैं श्रोताओं।
1: और साथ ही इसमें एक ABC का भी प्राथमिक चिकित्सा में बहुत ध्यान रखना होता है,
0: यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन।
1: तो बिल्कुल, अगर मरीज के आसपास हवा बिल्कुल सही ढंग से रहे, वो सांस सही ढंग से ले पाए और हवा का संचार यानी सर्कुलेशन सही ढंग से हो पाए तो फिर प्राथमिक चिकित्सा और भी ज़्यादा कारगर हो सकती है। और उसके बाद जैसे भी हो तुरंत नज़दीकी अस्पताल रोगी को ले जाएं ताकि जल्दी से जल्दी पूर्ण उपचार मिल सके। तो ये तो बात हुई हमारी काम की बात आज के मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और भी बातें आपसे शेयर करेंगे, किन लोगों का संबंध है आज के खास दिन से वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: श्रोताओं, आज जयंती विशेष पर हम याद कर रहे हैं भारतीय इतिहासकार और ब्रिटिश भारतीय इतिहास और भारतीय आर्थिक इतिहास के जानकार तपन राय चौधरी को। 8 मई 1926 को जन्मे तपन राय ने श्रोताओं कई पुस्तकें लिखी थी, जिसमें द वर्ल्ड इन अवर टाइम, बंगाल अंडर अकबर एंड जहांगीर और बंगाल लामा है। साल 2007 में श्रोताओं इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और 26 नवंबर 2014 को इनका निधन हो गया था। आज ही के दिन उड़ीसा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक गोपबंधु चौधरी का जन्म हुआ था 1895 में। भूदान आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तब इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और इस आंदोलन में शामिल हो गए और तब तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उन्हें उड़ीसा में अकाल पड़ने के समय सहायता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण के लिए कटक के पास अलाका आश्रम की स्थापना की और खुद 6 साल यहाँ रहकर विभिन्न रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया और नमक सत्याग्रह में उन्होंने अपने प्रदेश का नेतृत्व किया और सन 1930 में ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ये थे हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु चौधरी।
1: और आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन डागर जी को। इन्होंने संगीत की शिक्षा श्रोताओं अपने पिता उस्ताद जियाउद्दीन खान साहब से ली थी और पिता के देहांत के बाद अपने बड़े भाई से उन्होंने सीखना जारी रखा। ये उस परिवार से थे जिसने 19 पीढ़ियों तक ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाया था और 1994 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था।
0: साथ ही साथ श्रोताओं, आज ही के दिन निधन हुआ था सन 1982 में आत्माराम रावजी देशपांडे का। मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और इनके प्रसिद्ध संग्रह रहे फुलवात, भग्न मूर्ति, निर्वासित चीनी मुलास, दशपदी। साल 1977 में इन्हें दशपदी के लिए साहित्य अकादमी का मराठी पुरस्कार मिला था।
1: और आज हम याद कर रहे हैं भारतीय क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर को, जिनकी आज पुण्यतिथि है।

ये और उनके भाई दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर भी अपनी शहादत लेकर भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गए श्रोताओं। और ये तीनों चापेकर बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1897 में श्रोताओं पुणे में एक भयंकर ब्यूबोनिक प्लेग फैला था। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोकने के नाम पर वॉल्टर चार्ल्स रैंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया था और रैंड और उसके अधिकारियों ने पुणे के निवासियों के साथ बेहद ही क्रूर व्यवहार किया और इस अपमान का बदला लेने के लिए चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या की योजना बनाई। इसमें दामोदर चापेकर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लिए गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़ नाम के दो भाइयों ने मुखबिरी की थी और इसी विश्वासघात का बदला लेने के लिए वासुदेव चापेकर ने महादेव राणाडे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों की हत्या कर दी थी और इस

देवरानी राणा डे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों की हत्या कर दी थी और इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और आज ही के दिन यानी 8 मई 1899 को यरवदास जेल में उन्हें फांसी दी गई।

0: भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जिन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था 1929 में और इनके प्रारंभिक संगीत गुरु थे पंडित सरयू प्रसाद मिश्र। वैसे मात्र 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संगीत के अलग अलग शैलियों की शिक्षा प्राप्त की थी और तब इनके गुरु रहे पंडित श्री चंद्र मिश्र। वैसे खनकती हुई आवाज जहाँ उन्हें बिल्कुल सबसे अलहदा और खास बनाती है, वहीं उनकी ठुमरी, कजरी और चैती में जो बनारस का खास लहजा आता है वो उनके गायन को और भी अलग सा बना देता है और श्रोताओं में विशेष आकर्षण पैदा करता है।
1: और गायकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें साल 1972 में पद्मश्री और साल 1979 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, और संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और उनकी कजरी बरसन लगी बहुत ही फेमस हुई थी।

0: और कार्यक्रम में अब बात सांस्कृतिक समाचार की। तो श्रोताओं, कल जैन व्यू में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए।
1: और अब नजर डालते हैं खेल खबरों पर। आईपीएल के 19वें सीजन में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया और ये मैच लखनऊ में ही खेला गया था। वहीं आज का मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। वहीं बात करें अगर तीरंदाजी की, तो तीरंदाजी के विश्व कप के फाइनल में भारत और चीन की टीम्स स्वर्ण पदक के लिए आपस में भिड़ेंगी। कल भारतीय महिलाएं दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। ये थे सांस्कृतिक समाचार और अब आपको सुनवाते हैं नमस्कार का समापन गीत।

0: इसी समापन गीत के साथ आज का नमस्कार बस यहीं तक। आपका आज का दिन अच्छा ही नहीं गुजरे, बहुत अच्छा। करते हैं यही शुभकामना नमस्कार की पूरी क्रिएटिव टीम से की ओर से। और आपके आज के नमस्कार में आपके हम सफर थे मैं स्वाति भंसाली,
1: मैं सूफिया खान, और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
6: स्वागत दोस्तों 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर। हर हफ्ते जिस प्रोग्राम का इंतजार आप करते हैं लेकर हाजिर हैं, शुक्रवार का दिन सुबह 10 बज चुके हैं और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ खास मेहमान के रूप में, मेहमान डॉक्टर के रूप में भी हाजिर हो चुके हैं डॉक्टर आलोक गुप्ता, प्रोफेसर और हेड, पूर्व प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। बहुत विशद अनुभव है आपका और आज इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 18 साल से ऊपर के बच्चों की अब ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग होने का विचार चल रहा है। साथ ही इस वक्त गर्मी फिर से बढ़ने लग गई है और जो पश्चिमी विक्षोभ का असर था वो कम हो गया है, तो अब तापमान बढ़ेगा, गर्मी और लू बढ़ेगी और गर्मी और लू के बारे में जितनी भी एडवाइजरीज इशू होती है उसके साथ हम भी इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर हम सावधानी न बरतें। तो इस प्रोग्राम में आज हम शुरुआत तो ब्लड प्रेशर से करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो गर्मी और लू उससे किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं और अगर बचाव न कर पाएं या लापरवाही बरतें तो क्या हो सकता है। तो फिलहाल हम स्वागत करेंगे डॉक्टर आलोक गुप्ता का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
7: धन्यवाद।
6: और साथ ही तमाम दोस्तों को मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम में मैं जुड़ा हुआ हूँ आपका दोस्त संजय व्यास और हमारे साथ हमारे आज की होस्ट कविता जी हैं और मेरे साथी राजेश लामरोड। हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर आलोक गुप्ता हमारे आज के विशेष मेहमान से तो 9413329359 पर अपनी हेल्थ की खोज खबर ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर के बारे में जो अभी हमने पढ़ा भी था अखबार में कि 18 साल से ऊपर के बच्चों की स्क्रीनिंग होगी, तो आम तौर पर पहले ये माना जाता था कि ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये मिडिल एज की प्रॉब्लम है और आम तौर पर जो मध्य वय या अधेड़ावस्था में ही शुरू होती है तब इसकी स्क्रीनिंग वगैरह करनी चाहिए और घर में अगर आपके यंत्र है या फिर आप हॉस्पिटल में नियमित जांच करवाने की सलाह दी जाती थी। तो अब छोटे बच्चों को, यानी बच्चे जो बिल्कुल युवा हैं और अपने करियर के प्राइम में अभी आ रहे हैं, उनको भी क्या सावधानी रखने की आवश्यकता होती है ब्लड प्रेशर के मामले में?
7: बिल्कुल। एक असल में क्या है कि ब्लड प्रेशर, जिस तरह से हम बुखार की बात करते हैं तो बुखार एक बीमारी नहीं है, एक तरह का लक्षण है
6: जी।
7: तो ब्लड प्रेशर जो हमारी खून की नलियों में जो प्रेशर होता है वह हम नापते हैं और जिंदगी भर आप देखिए कि हार्ट जो अपना है वो प्रतिदिन 1,00,000 से ज़्यादा बीटिंग करता है
6: रोज।
7: अच्छा। जैसे किसी की आप देख लीजिए, मान लीजिए किसी की पल्स है 100 पर मिनट, तो 60 मिनट में कितनी हो गई, 6,000।
6: बिल्कुल
7: ठीक है ना। इसी तरह से 24 घंटे के अंदर आप लगा लीजिए अंदाजा, तो करीब करीब 1,00,000 बार कोई पंप चल रहा है। हार्ट हमारा एक ऐसा अमेजिंग पंप है, नेचर गॉड का, भगवान का दिया हुआ, जो 24 घंटे बीटिंग करता है। हार्ट रुक गया तो जिंदगी खत्म, लाइफ खत्म। तो हार्ट में के हार्ट को पंप करने पर जो प्रेशर लगाना पड़ता है वह ब्लड प्रेशर जो खून की नलियों में होता है उसके अगेंस्ट में हार्ट काम करता है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए एक यंग फेलो है, एक युवा व्यक्ति है और एक वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति को हम यदि कहेंगे कि रेलवे पुल पर चढ़कर एक अटैची उठा लो तो वो मुश्किल से उठा के चल पाएंगे, युवा लोग दो अटैची तक ले जाएंगे। लेकिन यदि किसी को ब्लड प्रेशर है तो वह ब्लड प्रेशर हार्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, हार्ट उसके अगेंस्ट में

0: बीट कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि लगातार हार्ट कमजोर होता जाएगा ब्लड प्रेशर की वजह से। और जो व्यक्ति आराम से एक या दो अटैची उठा के चल सकता है, वह थोड़ी दूर चलने पे हांफने लग जाएगा, थक जाएगा, इसका मतलब उसका हार्ट कमजोर हो रहा है। तो ये लक्षण लेट है, ये लेट स्टेज में आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि स्क्रीनिंग या ब्लड प्रेशर का जांच बहुत ज़रूरी है। और मैं इस बात पर इंसिस्ट करता हूँ कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर हर फिजिशियन, हर डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि वह ब्लड प्रेशर की जांच करे। क्योंकि बहुत सारे, कोई आदमी वायरल बुखार से आ रहा है क्लिनिक पे, कोई बुखार लेके आ रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक हमारे लिए एक मौका है कि हम ब्लड प्रेशर की जांच करें। और जैसा मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर भी एक तरह का एक मापदंड है शरीर का, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। प्रमुख कारण जो ज़्यादातर जो होता है ब्लड प्रेशर, जिसको असेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वह मिडिल एज के बाद शुरू होता है। वो उस वजह से होता है कि हमारी खून की नलियाँ जो होती हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा पानी की पाइप में स्केलिंग होती है, कुछ जमने लग जाता है।
1: जी जी,
0: ऐसा जिंदगी भर हमारी खून की नलियों में चिकनाई जमने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी तरह की लिपिड्स जो होते हैं वह जमने लग जाते हैं। तो दो कारण होते हैं, एक तो एज के कारण, एक ये जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स जो जमते हैं वो, तीसरा है इस तरह की आदतें जैसे धूम्रपान है, एल्कोहल है, गुटखा जर्दा अपने यहाँ पर काफ़ी लोग सेवन करते हैं, तो इन सब से खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। न सिर्फ ये कारण, बल्कि आजकल ये देखा गया है कि इवन वायरल फीवर, कोविड में भी हमने देखा है, और बहुत सारे वायरल फीवर वह भी खून की नलियों की अंदर की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। हर इन्फेक्शन डैमेज करता है, डैमेज करने से वहाँ पर खून का थक्का जमने की, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसको हम एंडोथीलियल डिसफंक्शन बोलते हैं, यानी अंदर की जो लाइनिंग है उसका डैमेज। और जो जैसा युवावस्था का आपने पूछा, तो उसमें और भी कारण होते हैं, कई जन्मजात कारण होते हैं जिनमें खून की नलियों में डिफेक्ट होते हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर हो सकता है। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस होता है, कोआक्टेशन ऑफ आओर्टा होता है, हार्मोनल डिफेक्ट्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, एड्रेनालिन हार्मोन होता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वह किसी के ज़्यादा सीक्रीशन हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड की अधिकता, यह भी ब्लड प्रेशर कर सकती है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए, और किडनी, यदि किसी के किडनी की जन्म से बीमारी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या किडनी में पथरी है, तो उसको कम उम्र में भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर नापने से ये हम इसका बचाव कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं, और घातक जो इसके दुष्प्रभाव होते हैं, हार्ट अटैक, पैरालिसिस का अटैक, किडनी फेल, आंखों की रोशनी, पर्दा खराब होना, इन सबको हम समय पर जांच करके रोक सकते हैं।
1: हमारे शरीर में ये लगभग उसी प्रकार का नुकसान करता है जैसे डायबिटीज़ हमारे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती
0: जी,
1: है।
0: जी, डायबिटीज़ में भी ये देखा गया है कि यदि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर साथ हो तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक ग्यारह होते हैं, इतना नुकसान होता है
1: जी
0: बॉडी पे, इतना नुकसान होता है, उसमें डबल नुकसान होता है, दोनों किडनी फेल कर सकते हैं, दोनों हार्ट अटैक कर सकते हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों पैरालिसिस कर सकते हैं, दोनों आईसाइट पे असर डाल सकते हैं, तो ये दोनों मिलके इसका प्रभाव ब्लड प्रेशर का और भी कई गुना बढ़ जाता है
1: जी। और भारतीयों में आमतौर पर ये दोनों बीमारियां जोड़े में ही आती हैं।
0: बिल्कुल जुड़ी हुई आती है, और आजकल इसके साथ जुड़ गई है ओबेसिटी, मोटापा।
1: बिल्कुल,
0: अलग अलग सर्वे हुए हैं जिनमें ये पता लगा है कि विकसित देशों में हर तीसरा व्यक्ति और विकासशील देशों में हर पांचवा व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है। पहले चिंता थी भूखमरी की, वो आज भी है, बहुत सारे देशों में है, लेकिन अब दूसरी जो चिंता हुई है जिसको हम मेल नरिशमेंट बोलते हैं, वो हो गई है मोटापा। तो मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये तीनों मिलकर एक ऐसा ट्राइड बनाते हैं, ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जो किलर ट्रायंगल है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आजकल जिम के अंदर आपने देखा होगा आता है कि जिम करते करते एकदम हार्ट रुक गया।
1: जी बिल्कुल,
0: इस तरह के एकदम से परफॉर्म करते करते लाइव परफॉर्मेंस में एकदम उसको चक्कर आ गए, गिर पड़ा, कोमा में चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अनडिटेक्टेड ब्लड प्रेशर इसमें एक प्रमुख कारण है। उनको पता नहीं होता कि हमारी ब्लड प्रेशर है, या पता है तो दवाइयाँ नहीं ले रहे होते, कंट्रोल में नहीं होता। तो इसलिए एक ब्लड

0: मिश्र एक ऐसी चीज है जो बहुत ही आसान है, जिसको हम आसानी से घर पे भी नाप सकते हैं और इसका इलाज भी बहुत आसान है।
1: बिल्कुल, तो एक तरह से हम कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की कोशिश करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर है तो किस तरह से उसको हम डील कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर आलोक गुप्ता, पूर्व प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में हम अपने दोस्तों को कुछ गाने भी सुनवाते हैं ताकि वो और तरोताज़ा होकर हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुन सकें,
0: जी
1: और साथ ही हमारे दोस्तों को हम ये भी कहेंगे कि जो आज हम बातचीत कर रहे हैं ब्लड प्रेशर पर, तो इसके संदर्भ में कोई अगर आपका सवाल या जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। 9413329359 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपके सवालों को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अब एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, तो डॉक्टर आलोक आपका भी जो है वो हिंदी जो फिल्म म्यूजिक है ये प्रिय विषय
0: जी
1: है,
0: जी बिल्कुल जी
1: और ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य है कि आप समय भी कैसे निकाल पाते हैं, अच्छी खासी
0: जी
1: जानकारी भी आप रखते
0: जी
1: हैं। और हम मतलब चाहेंगे कि आप अपना कोई प्रिय गाना सबसे पहला जो हमारे दोस्तों को सुनवाना चाहते हैं वो कौन सा
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो गीत चुने हैं वो आपके
1: है?
0: पास
1: बिल्कुल,
0: हैं, तो आप में से देखिएगा, क्योंकि ऐसे गीत सुनकर हम बड़े हुए हैं
1: जी
0: और मैंने तो मेडिकल की सारी पढ़ाई ये आपका छाया गीत प्रोग्राम रात को, क्योंकि दिन में हम अस्पताल रहते थे तो रात को छाया गीत जरूर सुनते थे।
1: छाया
0: और
1: गीत
0: मुझे
1: प्रोग्राम तो सर इतना चिरजीवी है कि जब
0: जी
1: आप स्टूडेंट थे तब भी
0: तब से
1: चलता
0: चल रहा
1: था,
0: था बिल्कुल
1: और अब आपके जो स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स
0: जी
1: हैं
0: जी
1: होंगे वो भी
0: वो
1: इस
0: भी
1: प्रोग्राम को उसी वक्त सुन
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब आप गीतकार का नाम संगीतकार का नाम बताते थे,
1: जी
0: तो उससे धीरे धीरे ये इसमें रुचि बढ़ती जाती है और ये पता लगता है कि कितने महान संगीतकार, कितने महान गीतकार हमारे यहाँ हुए हैं, जिसको एक लिटरेचर की संज्ञा हम दे सकते हैं,
1: बिल्कुल, एक सरल भाषा में पूरा एक जीवन का
0: जीवन की
1: फलसफा उन्होंने दिया।
0: फलसफा बिल्कुल।
1: चलिए सर, सुनते हैं, आपने जो गीत हमें बताए हैं उनमें से पहला चुनाव हमने किया है, और कविता जी तैयार हैं इस प्रोग्राम में इस गीत को लेकर के, उसके बाद लौट के हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: स्वागत दोस्तों आपका हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में 102.1 एफएम पर। हम बोल रहे हैं रेडियो सन सिटी से और हम बातचीत ब्लड प्रेशर पर कर रहे हैं। इस पर आप जो श्रोताओं के सवाल आए हैं वो हम लेंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर को। सर, इसका जो मान है, जैसे हम ब्लड प्रेशर है या नहीं, सबसे पहले अगर इसको हम रूल आउट करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर तो होगा
2: जी जी,
1: क्योंकि आपके शरीर में जो रुधिर है वो एक दाब पे बहेगा
2: जी,
1: लेकिन वो प्रेशर कितना होना चाहिए और उससे ज्यादा होने पर वो नुकसानदायक हो सकता है?
2: देखिए, जब बच्चा जन्मता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 18 वर्ष की होते होते ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर 110-70 इतना रहता है, उसके बाद में 120-80, जिसको बहुत सालों से हम एवरेज ब्लड प्रेशर कहते आए हैं। इसका मतलब ये है कि 120 ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 ब्लड प्रेशर, 80 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये जो है एवरेज है। एवरेज का मतलब आप सभी समझते हैं कि कुछ पॉपुलेशन का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, लेकिन ये देखा गया है कि जितना प्रेशर हम कम रखते हैं उतनी उम्र लंबी होती है। जैसा मैंने बताया, हार्ट पे लोड पड़ता है, तो हार्ट की उम्र हमारी उम्र, तो इस कंसेप्ट को देखते हुए पिछले 25 वर्ष में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च का परिणाम ये निकला है कि अब जो कंसेंसस है, पहले हम ये मानते थे कि 140 और 90 से ऊपर दवाई शुरू कर देनी चाहिए, अब जो नई गाइडलाइंस हैं, और ये गाइडलाइन अपने आप नहीं आई है, कई बार इसमें भ्रांति करते हैं लोग कि ये फार्मा कंपनीज या दूसरे प्रेशर से गाइडलाइन आती हैं, ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिक रिसर्च शोध के कारण से गाइडलाइन आई है, जिसमें ये पाया गया है कि 130 और 80 इससे नीचे ब्लड प्रेशर रखना है, लेकिन यदि 130 से किसी का 120 रहता है या किसी का 110 रहता है, तो उसकी उम्र 110 वाले की उम्र 120 वाले से ज़्यादा होती है। जिसका 130 है उससे 110, तो ये देखा गया है कि कम ब्लड प्रेशर से उम्र लंबी होती है, और कौन अपनी उम्र कम करना चाहेगा। तो आप ये मान के चलिए कि ब्लड प्रेशर जो है, आज की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 130 और 80-80 इससे ज़्यादा यदि किसी का ब्लड प्रेशर है तो उसको इलाज की आवश्यकता है। इलाज में ज़रूरी नहीं है कि हम सीधी गोली दें, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं वो स्मोकिंग छोड़ने से, वजन कम करने से, एक्सरसाइज करने से, खान पान में बदलाव करने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल आता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिनमें योगा, म्यूज़िक और किसी को प्रेयर, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये आप मान के चलिए कि अपना ब्लड प्रेशर 130-80 से कम रखना बहुत ज़रूरी है। घर पे नाप सकते हैं, नज़दीकी क्लिनिक में नपा सकते हैं, और साल में एक बार नपवाने से आपको पता लग जाता है कि ब्लड प्रेशर है या नहीं।
1: जी सर, जैसे आपने कहा कि कुछ बीमारियां होती है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, जैसे आपने कहा किडनी से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती है जिनमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है
2: जी,
1: कुछ बुखार में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कुछ द्रव्यों का सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल ठीक ठाक हो
2: जी
1: और किसी प्रकार का उसको रोग ना हो, उसके बावजूद भी उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, अननोन रीजन से भी हो सकता है?
2: बिल्कुल होता है, इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं।
1: ओके।
2: और ये ज्यादातर फैमिलीज में और जीन्स में होता है।
1: ओके।
2: लेकिन एक एक

0: स्पेशल चीज है हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में, जो साउथ एशिया में रहते हैं, जिसमें भारत से लेकर सारा साउथ एशिया शामिल है, कि हमारी जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की उम्र है वो वेस्टर्न लोगों से कम है। यानी कि जो वेस्टर्न लोगों में 65 के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, ज़्यादातर 55 की उम्र के बाद, हमारे यहाँ वही ब्लड प्रेशर हम देखते हैं कि 40 की उम्र से बढ़ना शुरू हो रहा है। और मॉडर्न लाइफ स्टाइल, फास्ट फूड, लॉट ऑफ स्ट्रेस, बेरोजगारी, सुबह से रात तक की वर्किंग, लगातार ईमेल्स देखते रहना, लगातार मोबाइल देखना, स्ट्रेस रखना, नींद कम होना और लगातार एक जगह पर सिटिंग, ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत घातक है। ये देखा गया है कि जो लोग 6 से 8 घंटे की सिटिंग लगातार रखते हैं, उनको कम उम्र में ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है। ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, जिसको उतना ही रिस्क वाला माना गया है जितना कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग को माना गया है। तो कंटिन्यूस सिटिंग इज ऑल्सो डेंजरस।
1: तो सर, जो जब आप मान लीजिए किसी काम से बैंक जा रहे हैं, आजकल तो
0: जी
1: कम काम पड़ता है, तो बैंक कर्मी जो अपनी चेयर पे लगातार पब्लिक डीलिंग करते हैं, या फिर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, उसकी भी अब ज़रूरत कम हो गई है, लेकिन फिर
0: जी
1: भी खिड़कियां तो खुली रहती हैं, तो ऐसे काम करने वाले जो कार्मिक होते हैं, उनको आप अपनी तरफ से मुफ्त में सलाह देते हैं कि भाई क्या किया जा सकता है,
0: बिल्कुल
1: बैठना तो ही
0: बिल्कुल
1: उनको
0: बिल्कुल। ये देखिए, सलाह तो सब जगह मुफ्त ही मिलती है, और
1: लेकिन
0: भारत
1: आप
0: में
1: कभी कभी,
0: सलाह
1: आप लोग
0: सलाह
1: चार्ज भी
0: की
1: करते
0: कमी
1: हैं, डॉक्टर्स लोग जो
0: कमी
1: विशेषज्ञ
0: कमी नहीं
1: सलाह।
0: है। लेकिन ये मैं जो भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, आपका क्या काम है, और इसमें काम में क्या इन्वॉल्व है। जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है तो भैया आप फील्ड विजिट करते हैं, फैक्ट्री का राउंड लेते हैं, या ऑफिस वर्क करते हैं। तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो जी रहे हैं, तो रेलवे का आपने बताया, सारे कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब हाई रिस्क पे है। तो इसमें मैं ये सलाह देता हूँ कि ठीक है, आपको काम करना है, लगातार करिए, उससे आप बच नहीं सकते हैं और बचना भी नहीं चाहिए, लेकिन हर 1-1.5 घंटे बाद आप चेयर से उठ जाइए, उसी कमरे में घूमकर 1 गिलास पानी पी लीजिए, वॉशरूम होके आ जाइए, या एक कमरे का चक्कर लगाकर आसपास थोड़ा सा देखकर खिड़की तक जाके वापस बैठ जाइए। इतना करने से जो हमारी नसें दबती हैं, वेन्स और आर्टरीज, लगातार सिटिंग से वह खुलती हैं, क्योंकि लगातार एक सिटिंग से हमारी थाइज के नीचे पैरों में जो होता है काफ मसल्स जो होती हैं, वो हमारे एक सेकंड हार्ट की तरह काम करती है, पंपिंग की तरह।
1: अच्छा,
0: तो पैदल चलना, लगातार एक्सरसाइज करना, ये बहुत काम की चीज़ है, और ब्लड प्रेशर में ये बहुत लाभदायक है।
1: बिल्कुल। और हमारे तमाम दोस्त जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और अपने सवाल पूछ रहे हैं, रविराज व्यास ये पूछते हैं जोधपुर से कि ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, कौन सी दवाई कितने ब्लड प्रेशर पर दी जाती है, इसकी जानकारी दें, तो ये तो डॉक्टर का वो एक
0: देखिए, बिल्कुल
1: ऑब्जर्वेशन
0: आप सही
1: है।
0: कह रहे हैं। आज की जो मॉडर्न दवाइयां हैं, वह न सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करती हैं, लेकिन वे मार्केट में जब अलाउड होती हैं, जब वो हार्ट अटैक को रोकने की क्षमता रखती हैं, या किडनी को खराब होने से रोकने की क्षमता रखती हैं। तो आजकल जो रिसर्च चल रही हैं, जो दवाइयां हैं, न सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करती हैं, वे हार्ट अटैक को कम करती हैं, किडनी फेलर को कम करती हैं, पैरालिसिस के अटैक को रोकती हैं, आंखों की रोशनी को बरकरार रखती हैं। तो आप निश्चित रूप से किसी भी चिकित्सक को दिखाकर, यदि किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, तो हम ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को टेंशन में आया, कोई ब्लड प्रेशर हो गया और एकदम दवाई शुरू कर दें। हम कहते हैं भाई 2-3 बार आप नपवा के देखो, लगातार 3 रीडिंग आपकी 130-80 से ऊपर हैं, तो फिर मेडिसिन शुरू करते हैं, और उस तरह की मेडिसिन देते हैं जो 1 या 2 गोली रोज की लेने से आपको 24 घंटे कंट्रोल रहता है, हार्ट का बचाव रहता है, किडनी का बचाव, पैरालिसिस का अटैक रुकता है।
1: जी सर, जो ब्लड प्रेशर में आपने बताया कि सिस्टोलिक जो ऊपर वाला है और
0: जी
1: डायस्टोलिक नीचे वाला है,
0: जी
1: तो क्या ये संभव है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्यक्ति का 120 रहे लेकिन नीचे वाला 90-92 पहुंच जाए, तो उसमें क्या इलाज की जरूरत पड़ती है?
0: जी बिल्कुल। ऐसा है कि ये देखा गया है कि यंग पॉपुलेशन में जो स्ट्रेस होता है, इसमें सिंपेथेटिक नर्व्स होती हैं हमारी, जो सिकुड़ती हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, उसमें कुछ हार्मोन्स, केमिकल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और स्टेरॉइड हार्मोन लगातार उनके सर्कुलेशन में रहते हैं, वे लोअर ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और जैसे
1: अच्छा,
0: जैसे उम्र बढ़ती है, तो लोअर ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ज़्यादा उम्र में देखा गया है कि 170/90 वन सिक्स

0: 60/80 इस तरह का ब्लड प्रेशर, लेकिन दोनों ही नुकसानदायक हैं।
1: उतने ही नुकसानदायक है नीचे वाला भी?
0: जी कम उम्र में नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा नुकसान करता है और ज़्यादा उम्र में ऊपर वाला, लेकिन दोनों ब्लड प्रेशर जब हम मेडिसिन लिखते हैं तो दोनों ब्लड प्रेशर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर कार्डियक फीलिंग में हेल्प करता है और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सारे ऑर्गन्स की फीलिंग में, जो हार्ट की पंपिंग है
1: अच्छा
0: उस पे काम करता है। तो दोनों इम्पोर्टेंट।
1: सर जो दवाइयाँ होती है ये दोनों प्रकार के ब्लड प्रेशर के लिए कारगर होती हैं या उनके लिए अलग होती है, डायस्टोलिक के लिए और सिस्टोलिक के लिए अलग होती
0: है? ज्यादातर दवाइयाँ जो है वे दोनों ब्लड प्रेशर पे काम करती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक।
1: जी
0: कुछ इस अलग से दवाइयाँ जैसे बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप है एक दवाइयों का जो सिंपैथेटिक ड्राइव को कम करता है, जो लोअर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कम करता है, तो वे दवाइयाँ उसमें हेल्पफुल होती हैं। कुछ दवाइयाँ साल्ट निकालती हैं बॉडी से, नमक एक्स्ट्रा। कुछ दवाइयाँ डायूरेटिक्स होती हैं जो एक्स्ट्रा पानी को, एक्स्ट्रा लोड को निकालती हैं। कुछ दवाइयाँ ब्रेन पे काम करती हैं, कुछ हार्ट पर, कुछ किडनी पर। तो इस तरह अलग अलग ग्रुप में हम ये देखते हैं कि जिसको जिस तरह का ब्लड प्रेशर है उस तरह की दवाइयाँ दी जाती
1: हैं। जी इसीलिए विशेषज्ञ की सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है और आजकल तमाम जो परामर्श के, खास करके जो AI के ज़माने में हम लोग तुरंत फुरंत उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें कृपया जो है वो दवाइयों के बारे में पूछ करके और वो सलाह पे काम न करें। डॉक्टर की सलाह ही इसमें अंतिम और प्रथम माने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर साहब एक सवाल हम और लेते हैं, उसके बाद हम एक गाने की तरफ और बढ़ेंगे। ये हमारे साथी हैं रामनिवास बैरवा जी जोधपुर से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब सवाल इनका ये है कि जिनके हार्ट में छल्ले, जिसको स्टैंड बोलते हैं, स्टेंट कहना चाह रहे हैं, लगे होते हैं और उसका बीपी से भी कोई संबंध होता है, क्या और बीपी की गोली हमेशा लेना जरूरी है या नहीं, उचित परामर्श दें?
0: देखिए मैं हमेशा से ये बात बोलता रहा हूँ, मेरे मरीजों को भी बोलता हूँ और कहीं भी हम लोग लेक्चर देते हैं तब भी यही बात बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर का इलाज आपको हार्ट में स्टेंट लगाने से रोकेगा। यानी कि
1: अच्छा,
0: कोई आदमी यदि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित लेता है, कंट्रोल में रखता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखता है, लाइफस्टाइल कंट्रोल रखता है, तो उसको ये नौबत ही नहीं आएगी कि वो हार्ट में एंजियोग्राफी कराए और उसके स्टेंट डले। स्टेंट जब डल चुके हैं तो ये मान के चलिए कि ऑलरेडी उनको हार्ट डिजीज है। ऐसे लोगों को दवाइयाँ लेना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन साथ में मैं एक बात और बताऊँगा, जितनी गर्मी अपने यहाँ पड़ती है, जितनी गर्म में पड़ती है उसके अंदर कुछ विशेष दवाइयाँ जैसे डायूरेटिक्स होते हैं, जैसे मैंने बताया पानी और साल्ट को बॉडी से निकालते हैं, तो ऐसी दवाइयों के डोज को गर्मी में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि यदि ज़्यादा मात्रा में वो दवाई लेंगे तो कई बार पानी की कमी या साल्ट सोडियम की कमी हो जाती है, उनको चक्कर आने लग जाते हैं ब्लड प्रेशर की गोलियाँ लेने के बाद में, और ब्लड प्रेशर कई बार कम भी रहने लग जाता है। तो ऐसे मामलों में नियमित चेक करा के अपनी दवाइयों की डोज को दोबारा से एडजस्ट कराएं, लेकिन ये मान के चलिए कि जो आपने पूछा है, दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमें कम रखना है तो ज़्यादातर गोलियाँ 24 घंटे काम करती हैं, तो हर 24 घंटे में आपको उसी टाइम पर दवाई रिपीट करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी इम्पॉर्टेंट नोट पर हम चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो डॉक्टर साहब आपने जो सूची दी है कोई है, उसमें आपको लगता है कि अब ये गाना सुने उसके बाद दूसरा हो जाए, कुछ याद ध्यान में आ रहा है? आपकी सूची
0: आप
1: तो हमारे पास सुरक्षित है।
0: मुझे क्या है, जो शैलेंद्र एज ए गीतकार
1: आपको बहुत पसंद है,
0: बहुत पसंद है, साहिर शैलेंद्र और आजकल गुलजार और जावेद साहब,
1: बिल्कुल,
0: तो ये एक अलग पोइट्री है इनकी, अलग लेवल है। तो कोई भी इनका गीत सुनते हैं तो एक अलग लेवल होता है। इसी तरह जितने भी संगीतकार हुए उसमें SD बर्मन, शंकर जयकिशन, बड़े बड़े नाम हैं,
1: बिल्कुल,
0: OP नैयर।
1: नई पीढ़ी में जैसे जो गीतकार संगीतकार आए हैं नई पीढ़ी में, उनमें भी कुछ पसंद है आपको नई पीढ़ी के जो है?
0: अरिजीत सिंह जी के हैं,
1: हाँ।
0: और अभी जो दूसरे भी गायक आ रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अभी उनको बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनको जो लिरिसिस्ट जो गीत मिल रहे हैं वे शायद उतने अच्छे नहीं है जो पहले थे, तो उनका इम्पैक्ट जो है एक शॉर्ट लिव्ड है, लंबे समय का नहीं है।
1: बिल्कुल, तो आपकी सूची में से ये गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट के हाजिर होते हैं और हम अपने काम की बात पे फिर से लगते हैं। और काम की बात हम कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, तो थोड़ी सी और उसके बारे में जो हमारी जिज्ञासाएं हैं वो हम डॉक्टर

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।
6: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों 102.1 FM रेडियो सन सिटी हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। आज बातचीत तो कर रहे हैं बीमारियों के बारे में, लेकिन डॉक्टर आलोक गुप्ता ने अपनी पसंद के कुछ गानों की जो लिस्ट दी है, तो ये जो गाना था ये तो बिल्कुल टाइमलेस गाना था।
7: बिल्कुल बिल्कुल,
6: और इसे हर उम्र का आदमी और हर वक्त में सुना जा सकता है,
7: और एक इसमें फलसफा है इस गाने में,
6: इसीलिए ये टाइमलेस है।
7: बिल्कुल टाइमलेस है,
6: बिल्कुल। जीवन के बारे में बहुत सरल शब्दों में
7: जी,
6: आसान शब्दों में
7: बिल्कुल बिल्कुल,
6: गंभीर और बड़ी बात कह देना
7: जी,
6: ये शैलेंद्र की खासियत थी
7: जी।
6: और उस दौर में सर, आप थोड़ा सा और विस्तार भी देंगे मेरी बात को, कि राज कपूर जी, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र,
7: शंकर
6: जयकिशन और मुकेश, इन्होंने जो एक टीम बनाई थी, उन्होंने बहुत यादगार एक चीजें रचनाएं दी हमें
7: जी।
6: तो अब ये हमारे बीच में नहीं है,
7: बिल्कुल,
6: और
7: खूबसूरती उनकी सिंप्लिसिटी,
6: सिंप्लिसिटी
7: कि सब सरल शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना।
6: बिल्कुल, तो इस तरह के गाने हम और सुनेंगे। और आप जिक्र भी कर रहे थे कि जितने भी गायक हुए हैं महान गायक, उनको बार बार सुनने की इच्छा होती है, तो रफ़ी साहब जो अपने आवाज़ के वैविध्य के कारण, रेंज उनकी,
7: रेंज
6: किशोर कुमार जी, लता
7: जी,
6: और उसी कड़ी में लता जी की ही बहन आशा जी, जिनका अभी कुछ अरसे पहले निधन हो गया। तो अब कई लोगों को क्या है कि अपनी अपनी पसंद है, लता जी तो खैर अपने आप में हम कह सकते हैं कि सुरों की साम्राज्ञी या महारानी थी, लेकिन आशा जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो भी आपको उतनी ही पसंद है उनकी आवाज़?
7: जी बिल्कुल, क्योंकि आर डी बर्मन जैसे महान संगीतकार के ये शब्द थे कि लता जी को कोई कॉपी कर पाएगा लेकिन आशा जी को कॉपी कोई नहीं कर सकता।
6: अच्छा।
7: क्योंकि उनकी जो रेंज है वो बहुत ही विशाल थी। तो ये दोनों अलग अलग तरह के की वो हुई हैं सिंगर, और दोनों बहनें हैं, और दोनों इतना विशाल उनका जो है वो रेंज थी संगीत की।
6: बिल्कुल।
7: क्योंकि आशा जी की रेंज का पहले जो तड़क भड़क के और उस तरह के गीत थे, उसके बाद में जब उमराव जान आई,
6: उमराव जान जी,
7: तो पता लगा। एंड बहुत पुरानी फिल्मों में भी एक दो गाने उनके ऐसे थे जो यादगार थे, साहब बीवी और गुलाम में, और प्राण जाए पर वचन ने जाई उसमें, और वक्त में, जो कि वो भी टाइमलेस सॉन्ग्स हैं।
6: बेशक सर, ये भी है कि जैसे किशोर कुमार की तरह जो आशा जी की रेंज थी, और जो वो कलाकारी अपने गले के साथ कर पाती थी, जैसे डूडलिंग किशोर कुमार करते थे, तो लता जी वो उस तरह के गाने नहीं गाती, उन्होंने कोशिश नहीं की।
7: लता जी ने खुद ने कहा था कि भाई मैं आशा जी की जो है आवाज नहीं निकाल पाऊंगी, आप और किसी की आवाज मुझे कह दीजिए, मैं मेल सिंगर्स की भी आवाज मैं गा सकती, उसको गा सकती हूँ। क्योंकि लता ने एक बार बड़े हंसकर ये बात कही थी, तो उससे पता लगता है कि आशा जी कितनी मान थी।
6: बिल्कुल, तो अब हम आते हैं अपने विषय पर, और हमारे जो तमाम दोस्त हैं वो लगातार हमें सवाल पूछ रहे हैं। ये अब्दुल हमीद छिपा साहब हैं, पूछते हैं कि बीपी नापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सही होता है या फिर जो हाथ वाला मैनुअल है वो ठीक है? मैनुअल तो सब लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे
7: जी। ऐसा है कि अब ये जो मरकरी वाला जो इंस्ट्रूमेंट आता था, जो सब जगह दिखता था, जिसको हम स्टेथोस्कोप पर हाथ से नापते थे, वह अब बैन हो गया। एक तरह का बैन इसलिए हो गया कि मरकरी के जहाँ ये बनता है वहाँ पर नुकसान होने का डर रहता है वर्कर्स को और दूसरों को मरकरी की, तो अब आजकल डिजिटल ही काम में लेते हैं। सब जगह डिजिटल कई प्रकार के आ रहे हैं। मैं सलाह ये दूंगा कि जो हम अपर आर्म पे नापते हैं ऊपर की तरफ, कोनी से ऊपर, वे वाला इंस्ट्रूमेंट काम में लेना चाहिए। जो आजकल कलाई पे बांधने वाले आ रहे हैं वो गलत रीडिंग देते हैं, उनका उपयोग न करें। तो जब भी आप मॉनिटर ये इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, अच्छा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आजकल 1000-1500 में मिल जाता है, और इनकी गारंटी भी होती है, तो ये आराम से आप ले सकते हैं, घर पर नाप सकते हैं। कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग भी आती है, जो 24 घंटे ऐसे मरीजों को जिनका ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव बहुत रहता है, जो ये

0: कहते हैं कि मेरे को नींद में जागना पड़ता है, एकदम घबराहट हो जाती है, कई खड़े खड़े चक्कर आते हैं, बाथरूम में जाने पे चक्कर आ जाते हैं, ऊपर नीचे होता है, उनको एक डिवाइस आती है जो कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं एबीपीएम, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर, वह डिवाइस लगा देते हैं और उसको अटैच कर देते हैं, वो 24 घंटे की बीपी रिकॉर्डिंग हमें देता है। तो उससे कई बार बहुत मदद मिलती है, जब जब मरीजों का हमें ये पता नहीं लगता है कि क्लिनिक में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या क्लिनिक में कम है, और घर पर उनका प्रेशर बढ़ जाता है या रात को बढ़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एबीपीएम से पता लगाते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि नींद में ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर कम होता है, लेकिन यदि किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसका नींद में ब्लड प्रेशर भी उतना ही रहता है, नीचे नहीं जाता है। तो शुरुआत में हम एबीपीएम मशीन से ये बात पता लगा कर उनका इलाज शुरू कर सकते हैं।
1: ये भी घर में आदमी इस्तेमाल कर सकता है,
0: बिल्कुल
1: इसके
0: कर
1: लिए
0: सकता है,
1: हॉस्पिटल
0: ये
1: में भर्ती
0: डॉक्टर
1: होने
0: की
1: की
0: सलाह
1: आवश्यकता
0: पर,
1: नहीं।
0: डॉक्टर क्योंकि ये महंगी होती है मशीनें,
1: ये
0: तो ये
1: मशीन
0: डॉक्टर की सलाह पर एक तरह से 24 घंटे के लिए उनको दी जाती है, जिसके चार्जेस होते हैं, तो वो इसलिए वो रूटीन में हम काम में नहीं लेते। लेकिन डिजिटल मशीन ऐसी है कि जिनका बीपी ऊपर नीचे होता है, वे दिन में 2 बार 3 बार भी नाप सकते हैं। ज़्यादातर हम सलाह देते हैं कि सप्ताह में 1 बार नाप लें, और जिनको ब्लड प्रेशर स्टेबल है वो महीने में 1 बार नाप लें, तो इतना काफ़ी है।
1: बिल्कुल। और एक सर जो महत्वपूर्ण बात ये है कि कई लोगों में ब्लड प्रेशर कम होता है, इसको भी हमारे जो साथी हैं वो जानना चाहते हैं और सवाल भी इन्होंने किया है। ये है कि हमारा जो सवाल आया है वो हाई बीपी के लिए तो टेबलेट ली जा सकती है, ये बैरवा साहब ने पूछा है, लेकिन क्या लो बीपी के लिए भी कोई परामर्श है? लो बीपी अगर रहता है तो क्या उसे भी एक बीमारी के तौर पर हम मान सकते हैं?
0: देखिए, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में भ्रांति की तरह से काम में लेते हैं। भ्रांति का मतलब कि जैसे किसी को चक्कर आए, तो ये गांव में और ग्रामीण इलाकों में विशेष तौर से ये कहते हैं कि भाई एक आप ग्लूकोज चढ़ा लो, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। लेकिन जब नापते हैं तो देखते हैं कि वह 110/70 है या 100/70 है, तो ये लो ब्लड प्रेशर नहीं है। लेकिन 90/60 से यदि कम है तो वह लो ब्लड प्रेशर है। तो इसका कारण ढूंढना पड़ता है कि क्यों है। ज़्यादातर केमिकल्स, हार्मोन्स के कारण से एड्रिनल इनसफिशेंसी या दूसरी बीमारियां जो होती हैं, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारियां, जिनके हार्ट कमज़ोर हैं उनका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। तो ऐसे में हम उसका कारण पता लगाते हैं। और दूसरी बात, गर्मियों में जैसे किसी को पानी की कमी हो गई तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, नमक की कमी हो गई, कोई दिन भर मजदूर काम कर रहा है तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो उसमें हम पानी और साल्ट देकर उसको ठीक करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, किसी का ब्लड प्रेशर यदि लगातार हाई है, 170 रह रहा है, और किसी दिन अचानक उसने नापा 120, तो उसको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अचानक कम होना हार्ट अटैक का भी लक्षण होता है किसी,
1: अच्छा,
0: क्योंकि उसका हार्ट एकदम कमज़ोर हो गया, अटैक आया, तो चुपचाप किसी दिन उसको बेचैनी हुई, घबराहट हुई, देखा ब्लड प्रेशर 120 है, तो ज़्यादातर रिश्तेदार उनके ये समझते हैं कि सब ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था, ये कुछ नहीं है इनके, एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन हमने देखा है ईसीजी कराने पर उनके अटैक आ जाता है। तो लगा एकदम से ब्लड प्रेशर कम होना या एकदम बढ़ना, ये शरीर के लिए घातक है। कम होना एकदम हार्ट के लक्षण हो सकते हैं, एकदम बढ़ने से अपने को ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो 180 से ऊपर यदि ब्लड प्रेशर किसी का जाता है तो ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, इसको तुरंत दिखाकर ठीक करवाना चाहिए। ऐसे में नक्सीर आ सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, अटैक, हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है।
1: बिल्कुल। और इसी नोट पर हम एक और गीत की तरफ चलते हैं। तो डॉक्टर आलोक गुप्ता के चयनित गीतों की सूची में से स्पेशली क्यूरेटेड एक लिस्ट दी है डॉक्टर आलोक गुप्ता ने, उसमें से आज हम बहुत शानदार टाइमलेस जो सदाबहार गाने हैं वो सुन रहे हैं। तो उन्हीं में से एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद थोड़ी देर और हम बातचीत करेंगे ब्लड प्रेशर, और उसके बाद सलाह लेंगे गर्मी और लू के मौसम में हम किस तरह से बच सकते हैं।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज विशेष अतिथि हैं डॉक्टर आलोक गुप्ता, पूर्व प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। ब्लड प्रेशर पर बात कर रहे हैं और इस बाबत आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं जिन्हें हम बारी बारी से ले रहे हैं। ये हैं हमारे साथी खारिया खुर्द आडेल से कमरा राम जी, और ये लिख रहे हैं कि वैसे तो ब्लड प्रेशर बराबर रहता है लेकिन जब बुखार आता है तो काफ़ी दिनों तक ब्लड प्रेशर बराबर नहीं होता, तो क्या ये सामान्य है?
2: बिल्कुल ये सामान्य है, क्योंकि क्या होता है कि बुखार के अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे सिक्रीशन होते हैं जो कि बैक्टीरिया को, वायरल को क्लियर करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे सिक्रीशंस की वजह से शुरुआत में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन बाद में ये देखा गया है कि बाउंडिंग पल्स होती है बुखार में, यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है।

0: और ऊपर का करीब करीब उतना ही रहता है, तो उसकी वजह से आपको गर्माहट ज़्यादा महसूस होती है, पसीना भी ज़्यादा आता है, तो ब्लड प्रेशर ये सामान्य है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, विशेष तौर से यदि ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है या ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो ORS का घोल या नींबू की शिकंजी या छाछ में नमक डालकर वह थोड़ी थोड़ी देर में पीना चाहिए।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता हैं, ये इन्होंने पहले लिखा है कि खाने पीने के बारे में क्या सावधानी रखनी चाहिए ब्लड प्रेशर अगर है तो।
0: देखिए, आज मैं हमेशा से ये बात
1: केवल नमक ही सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट
0: जी
1: फैक्टर होगा?
0: नहीं, खाली नमक नहीं।
1: नहीं है।
0: देखिए कि ये बात अब वैज्ञानिक तौर से सिद्ध हो चुकी है, जो हम एक कॉमन सेंस

0: डालकर वह थोड़ी थोड़ी देर में पीना चाहिए।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता हैं, ये इन्होंने पहले लिखा है कि खाने पीने के बारे में क्या सावधानी रखनी चाहिए ब्लड प्रेशर अगर है तो।
0: देखिए आज हम मैं हमेशा से ये बात
1: केवल नमक ही सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा?
0: नहीं, खाली नमक नहीं। देखिए कि ये बात अब वैज्ञानिक तौर से सिद्ध हो चुकी है, जो हम एक कॉमन सेंस या हम लोग जब शुरुआत से ही बात सोचते थे कि किसी फैमिली में कोई व्यक्ति 90 इयर्स तक जिनके कोई तकलीफ नहीं। आज भी मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो गांव से, कि सब जिंदगी भर हमने कोई दवाई नहीं ली, और ये मेरी मदर हैं जो 85 की हैं, सब पहली बार ये बीमार पड़ी हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये 85 तक आज बिल्कुल हेल्दी हैं, तो उन्होंने जो खाना खाया जिंदगी भर जिससे उनको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही खाना जो है हमें लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है जिसको हम आजकल नेगलेक्ट कर रहे हैं, वह सबसे अच्छा खाना है।
1: जिसमें हमें यूरोप के खाने, जो भले वो ज़्यादा जी रहे हैं हमसे, लेकिन उस खाने को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है।
0: कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर जो खाना है उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा फाइबर वाला जो है वो फूड लेना चाहिए। चिकनाई की मात्रा उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आप पचा सकें, यानी कि कम लेनी चाहिए। जब जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो बचपन है उसमें तो चिकनाई चल जाती है, लेकिन बाद में इसको कम कर देना चाहिए। तीसरा है फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इट इज़ ए किलर। तो जितने भी तरह के फास्ट फूड हैं उनमें न सिर्फ चिकनाई की मात्रा ज़्यादा है, इस तरह की चिकनाई है जिसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं, जो शरीर पचा नहीं सकता, जिनकी वजह से हार्ट अटैक कम उम्र में आ सकते हैं। तो इस तरह का फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नमक के बारे में, क्योंकि गर्मियों में हमें साल्ट की ज़रूरत होती है, तो नमक कम रखिए, क्योंकि अपने जोधपुर में तो मिर्ची बड़े से लेकर कचौरी तक सुबह से शाम तक सब लोगों में भीड़ लगी रहती है, तो अपने यहाँ पर नमक कम करने की आवश्यकता है। लेकिन गर्मियों में इतना नमक कम करना नहीं चाहिए कि चक्कर आने लगे, क्योंकि पसीने के अंदर भी नमक और पानी
1: ऑलरेडी नमक रहता है सर। अगर हम अपने उसमें नमक जो है,
0: सभी चीजों में नमक होता है
1: जी, नमक होता ही है, और अचार अगर लेंगे तो वो भी नमक, पापड़ और खींचिया नमक वाला,
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी चीजें ऑलरेडी नमक वाली
0: हैं। मैं सबको मना करता हूँ कि जिनको ब्लड प्रेशर है कम से कम आटे में नमक नहीं मिलाए, उससे थोड़ा नमक पूरी फैमिली का कम हो जाता है।
1: ये सर कहावत के तौर पे कहा जाता है कि आटे में नमक जितना, और मुझे लगता है कि जरूर ऐसा होता होगा कि सब लोग आटे में नमक डालते होंगे, लेकिन थैंकफुली मैंने अपने घर में बचपन से कभी आटे में नमक मिलाते नहीं देखा। सारी कल्चर्स में, सारी कल्चर्स में,
0: बहुत अच्छी बात है,
1: मतलब सारी कल्चर्स में ये नहीं प्रेवेलेंट है कि आटे में नमक डालना ही डालना है।
0: जी बिल्कुल।
1: सर हमारी एक लिसनर है जयश्री, ये इन्होंने सवाल हालांकि थोड़ा सा अलग पूछा है, फिर भी परामर्श अगर आप दे सकें। मेरी भाभी को पीलिया हो गया है, तो हमें किन बातों का ध्यान खाने पीने में रखना चाहिए?
0: देखिए पीलिया भी बहुत तरह से होता है, ये इस समय दूषित पानी एक प्रमुख कारण होता है, जिसमें हिपेटाइटिस ए और ई के कारण पीलिया हो जाता है। यह 90% लोगों में 3 हफ्ते के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले लोग मानते थे कि ये खाना बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए, हल्दी बंद कर दें, पीलिया है, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल खाना उसको डिवाइड करके लीजिए, क्योंकि इसमें लीवर में सूजन होती है, इसलिए उस खाने को जो आप खाना लेना चाहते हैं उसको 4-5 बार में डिवाइड कर दीजिए। तरल पदार्थ ज़्यादा लीजिए, छाछ, लस्सी, इस तरह की ग्लूकोज, इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए।
1: प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का ऐसा कोई वो नहीं है?
0: कोई मना नहीं है, सब चीज़ ले सकते हैं।
1: कम लें या
0: चिकनाई का भी मना नहीं है, जितनी आप पचा सकते हैं ले सकते हैं
1: जी,
0: कम लीजिए।
1: हमारे साथी हैं सर शंकरलाल जी गोयल, इन्होंने पूछा है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन से लकवे का अटैक आ जाता है, उससे पहले उसका शरीर का बीपी बढ़ जाता है और पसीना खूब आता है, कंधे के पीछे दर्द होता है, तो आप बताएं कृपया कि अगर किसी को लकवे का अटैक आता है तो उसके पहले क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या इस तरह की चीजें हो सकती है जिसमें कंधे के पीछे दर्द होना?
0: बिल्कुल, शरीर में कुछ भी नया हो, विशेष तौर से एक अंग में या एक साइड में, पूरे शरीर के अंदर यदि पूरी कमजोरी है तब तो अलग कारण होते हैं, लेकिन किसी का एक हाथ, एक आंख, एक शरीर का, चेहरे का एक हिस्सा या पैर का एक हिस्सा कमजोर लग रहा है आपको, तो ऐसे में तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए अस्पताल में, क्योंकि एक गोल्डन आवर होता है न्यूरोलॉजी में, जो 4 घंटे के अंदर अंदर यदि मरीज पहुंच जाता है और उसको विशेष दवाई इंजेक्शन देकर उस क्लॉट को डिजॉल्व किया जाता है, जिससे 100% रिकवरी के चांस रहते हैं, नहीं तो

0: जिंदगी भर। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि कई बार अंधविश्वास के कारण लोग चिकित्सक को न दिखाकर अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं, वह गलत धारणा है। तुरंत 4 घंटे के अंदर जो है उसको दिखाना चाहिए। बाद में यदि लकवा लगातार रहता है तो ब्लड प्रेशर की दवाई, खून पतला करने की दवाइयाँ या दूसरे तरह की जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको बंद न करें। आस्था अपनी जगह है, आप जाइए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कहीं भी ले जाइए बाद में, लेकिन जो गोल्डन आवर है उसको मिस मत करिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी कपिल बोरा जी हैं, एडवोकेट। इन्होंने पूछा है कि काम क्रोध मद मोह इनकी अधिकता से भी डायबिटीज बढ़ जाती है, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। तो रामचरितमानस की तो महिमा अलग ही है, उससे ऊपर तो हम भी नहीं हैं। तो रामचरितमानस के कहे पर तो क्या टिप्पणी की जा सकती है अगर कहा गया है उसमें?
0: नहीं, बिल्कुल सही कहा है। देखिए, ये
1: कहीं ना कहीं जीवन के
0: जितने
1: जो
0: भी महाकवि हुए हैं, जितने भी इनमें जो ज्ञान है वह पूरे जीवन का सार है। आज चाहे तुलसी हो, चाहे दूसरे
1: कभी
0: महाकवि, या
1: हो
0: आज के कवि भी हैं, वे पूरे जीवन को संक्षेप में बता देते हैं। तो आपने जो कहा है और जो शास्त्रों में लिखा है, काम क्रोध लोभ माया, ये आदमी को अंदर अंदर स्ट्रेस देती है, टेंशन देती है। टेंशन से स्टेरॉइड, एड्रिनल, नॉरएड्रिनलिन और बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, केमिकल्स, वो रिलीज होते हैं बॉडी में और वो ब्लड प्रेशर को
1: जी,
0: बढ़ाते हैं।
1: इसका वैज्ञानिक आधार है। और आखिर
0: बिल्कुल
1: में
0: आधार
1: सर,
0: है जी।
1: इस प्रोग्राम के आखिर में तमाम दोस्तों को हम शुक्रिया कहते हुए आपसे पूछेंगे कि गर्मी और लू का जो मौसम है, इसमें आप जाते जाते कुछ अपनी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण अगर कोई सूत्र बताना चाहते हैं।
0: देखिए, गर्मी जो है, जो डायरेक्ट धूप पड़ती है, विशेष तौर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है, इसमें हमारे किसान मजदूर भाई जो काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको चाहिए कि वे प्रचुर मात्रा में पानी पीते रहें। न सिर्फ पानी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। अभी जैसे IPL के मैच चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है और वो तुरंत जाकर एक बोतल पानी की पीते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि पानी जो है वह लाइफ सेविंग है। पानी की कमी होना से यदि कोई लाइफ जाती है तो हमें सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि ऐसे मरीज आते हैं कई बार जो डिहाइड्रेशन सीवियर डिग्री का होता है, जिनके किडनी फेल हो जाती हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, क्लॉट बन जाते हैं और जगह जगह से ब्लड निकलने लग जाता है, जिसको DIC बोलते हैं। वह क्या होता है कि इतने हाई टेम्परेचर पे यदि लगातार हमारा शरीर काम करता है तो उनके प्रोटीन उस तरह से हो जाते हैं जैसे किसी चीज़ को हम फ्राई करते हैं। जो लोग अंडा खाते हैं उनको पता है कि जैसे अंडा डालते ही एकदम फ्राई होकर जम जाता है, तो ऐसे हमारा खून जम जाता है।
1: हाँ जी,
0: 45 डिग्री से ऊपर यदि टेम्परेचर है और शरीर का टेम्परेचर 41 से ऊपर पहुंचता है तो ये शरीर के लिए खतरा होता है। तो पानी की अधिकतम मात्रा आप लीजिए, पानी के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स पे ध्यान रखिए। सारे फल, विशेष तौर से केला, मौसमी, ये बहुत लाभदायक हैं। छाछ में नमक डालकर लीजिए, बहुत लाभदायक है। नारियल पानी बहुत लाभदायक है। पानी और ORS का घोल हर समय मौजूद रहना चाहिए। हम भी, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको चाहिए कि उनके अंडर में जितने काम कर रहे हैं वर्कर्स, इंजीनियर्स जो देख रहे हैं फील्ड को, तो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको इस तरह का घोल, इस तरह का पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। और वृद्ध लोग, बीमार लोग, जो किसी भी तरह से, किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको धूप में जहाँ तक हो सके नहीं निकलना चाहिए। जरूरी हो, जरूरी काम हो तो पानी की बोतल जरूर साथ रखिएगा।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर आलोक गुप्ता, पूर्व प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, आप हमारे स्टूडियो में आए और 1 घंटे तक आपने रक्तचाप और गर्मी और लू से बचावों पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
1: और दोस्तों, अब इस प्रोग्राम से इजाज़त। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM Sun City।

खमा घणी। जी हाँ, सूर्य नगरी की हवाओं में घुली संस्कृति, मेहरानगढ़ की शान, गलियों की रौनक और लोगों के दिलों की गर्म जोशी लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम जोधपुर इन्फोटेनिया लेकर। और आज आपकी दोस्त और होस्ट मैं हूँ कविता सांखला। स्वीकार कीजिए, नमस्कार। और आज जोधपुर इन्फोटेनिया में अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे जोधपुर की। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है जोधपुर के मिट्टी की खुशबू से भरा आपका अपना कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया। पर शुरुआत इस जुनून भरे गीत के साथ।

एक बार से फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जोधपुर इनपुटेनिया में। मैं हूं आज आपके साथ कविता सांखला। श्रोताओं, रेगिस्तान की धरती पर पानी सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है, और इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी की जो जरूरत हमारे जिंदगी की है उसे बयां करने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं होगी। और शायद यही वजह रही है कि हमारे पूर्वजों ने जोधपुर में ऐसे ऐसे अद्भुत जलाशय बनाए हैं जो आज भी हमारी विरासत और समझदारी की मिसाल है। तो आज के जोधपुर इन्फोटेनिया प्रोग्राम में हम उन्हीं जलाशयों पर बात करेंगे जो हमारी विरासत है।

बल्कि हमारी सदियों पुरानी संस्कृति है। तो इन्हीं जलाशयों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया में। और आज हम जोधपुर इन्फोटेनिया में बात कर रहे हैं जोधपुर के जलाशयों पर। कायलाना की शाम और डूबता सूरज मानो पूरा आसमान नीले शहर को सलाम कर रहा हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कायलाना झील की ही। जी हाँ श्रोताओं, इसे 1872 में प्रताप सिंह जी ने बनवाया था और ये जोधपुर का प्रमुख आर्टिफिशियल लेक माना जाता है और यहाँ सनसेट व्यू बहुत ही फेमस है। साथ ही श्रोताओं, सर्दियों में माइग्रेटर बर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कायलाना झील आज भी शहर के वाटर सप्लाई सिस्टम में इसका महत्व सबसे अधिक है। और भी इसी तरह के जलाशयों पर हम बात करेंगे, लेकिन ये गीत आपकी नजर।

श्रोताओं, जोधपुर के जलाशयों पर आज हम बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और रानी सर और पदम सर की ओर आपको लिए चलते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये दोनों झीलें मेहरानगढ़ फोर्ट के पास स्थित है। रानी जसमा दे ने 15वीं शताब्दी में रानी सर बनवाया था। पानी के संग्रहण की प्राचीन तकनीक का अगर कोई शानदार उदाहरण है तो आप रानी सर लेक को देख सकते हैं। इस लेक को ऊपर से देखने पर इनका दृश्य बेहद ही सुंदर लगता है। श्रोताओं, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में ये झीलें हमें यही सिखाती है कि पानी हमें बचाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इन जलाशयों का निर्माण पानी बचाने के लिए किया है और यह परंपरा हमें भी आगे ले जानी चाहिए। साथ ही श्रोताओं, बालसमंद झील जो कि 12वीं शताब्दी में बनवाई गई थी, पहले ये शहर में पानी पीने का पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी और इसके आसपास के बाग और महल बहुत ही आकर्षक है। जी हाँ श्रोताओं, यहाँ की जो हरियाली है वो

इस रेगिस्तान के बीच कुछ अलग ही सुकून का एहसास करवाती है। जी हाँ श्रोताओं, बालसमंद की ठंडी हवाएं ऐसे एहसास कराती है जैसे कि रेगिस्तान के बीच किसी ने हरियाली का सपना बो दिया हो।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है तुम पढ़ो।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
7: श्रोताओं, जोधपुर इन्फोटेनिया कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के FM सेंसिटी चैनल पर 102.1 मेगाहर्ट्ज़। और आज हम जोधपुर इन्फोटेनिया कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जोधपुर के जलाशयों पर। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अगला जलाशय आपको बताते हैं, तुरजी का झालरा। जी हाँ, तुरजी का झालरा जो कि पारंपरिक स्टेप वेल है। 1740 में महारानियों द्वारा बनाया गया ये तुरजी का झालरा, पहले यहाँ के लोग इस झालरे का पानी पीने के लिए उपयोग में लेते थे। हालांकि अब यह हेरिटेज अट्रैक्शन बन चुका है, लेकिन पहले लोग जब यहाँ पानी भरने आया करते थे तब सामाजिक मेल मिलाप भी उनमें हो जाता था। जी हाँ, जब वहाँ की औरतें पानी भरने आती थी तो उनमें बातचीत शुरू हो जाती थी जो घंटों भी चलती थी। जी हाँ श्रोताओं, तुरजी का झालरा सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, उस समय उस दौर का सोशल नेटवर्क भी हुआ करता था। श्रोताओं, आज जब दुनिया वाटर क्राइसिस की बात कर रही है ना, तब जोधपुर के ये जलाशय हमें बताते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो रेगिस्तान में भी पानी की कहानी लिखी जा सकती है। और जोधपुर के ये जलाशय सिर्फ पत्थर और पानी नहीं है, ये हमारी विरासत, दूरदर्शिता और प्रकृति के प्रति सम्मान की पहचान है।

श्रोताओं, जोधपुर में पुराने समय में लोग सिर्फ बड़ी नदियों के जल पर निर्भर नहीं रहते थे। यहाँ छोटे बरसाती नाले, तालाब, नाडियाँ, बावड़ियाँ, इन सब को जोड़कर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था कि बारिश का पानी रोकना कैसे है, जमीन में पानी का रिचार्ज किस तरह करना है, खेती और पशुओं के लिए पानी बचाना है, ये सब सेंचुरीज पहले से यहाँ की जीवन शैली का एक हिस्सा हुआ करती थी। जी हाँ श्रोताओं, जहाँ भारत के कई शहर बड़ी नदियों के किनारे बसे हैं, वहीं जोधपुर के वासियों ने पानी की कमी को अपनी ताकत बना लिया। यहाँ लोगों ने हर बूंद को संभालना सीखा है और इसी सोच ने तालाबों, बावड़ियों और नाडियों, मौसमी नदियों को अपने जीवन का आधार बना दिया। जोधपुर की नदियों, नालों, नाडियों, बावड़ियों में जल भले ही साल भर नहीं बहता है, लेकिन ये हमें हर साल यही संदेश देते हैं कि जल की कीमत वही समझता है जिसने रेगिस्तान में जीवन बसाया हो। वो कहावत है ना कि जल है तो कल है।

0: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: श्रोताओं, जोधपुर के पूर्वजों ने पशु पक्षियों के लिए भी जो जलाशयों का निर्माण करवाया ताकि पशु पक्षी पानी को तरसे ना, तो उनके लिए कई छोटी छोटी नाड़ियां और तालाब बनवाए, जो कि शहर की पुरानी जल संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर उन नाड़ियों की मैं बात करूं तो जोधपुर में ऐसी कई नाड़ियां हैं जो कि इन पशु पक्षियों के लिए जल का स्रोत बनी हुई है। उनमें रामतलई नाडी, पुंजला नाडी, मामा नाडी, ये तीनों नाडी मंडोर क्षेत्र में स्थित है, मंडोर क्षेत्र के मगरा पुंजला क्षेत्र में। इन तीनों नाडियों में बरसात का जल इकट्ठा होता है, जो कि पशु पक्षियों के लिए जल का स्रोत बनी हुई है। आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं, वो इस जल की, इन नाडियों में जल की कमी नहीं होने देते हैं और पशु पक्षियों के लिए ये जल वरदान बना हुआ है। इनके अलावा और भी जलाशय हैं जो कि जोधपुर के जलाशयों में शामिल हैं, तो उनमें अगर बात की जाए तो लाल सागर का तालाब, पैतलाव नाडी, नागादड़ी, खरबूजा बावड़ी, अमृत सरोवर हॉर्टिकल्चर पार्क बनाड़ में स्थित है, साथ ही उम्मेद सागर जो लेक है वो चौखा में है, और इसके अलावा बड़ली भैरू जी तालाब भी हमारी संस्कृति में शामिल है, हमारी धरोहर में शामिल है। या श्रोताओं, पुराने समय में आसपास के लोग और पशुओं के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत जाने वाली ये नाडियां बरसात के पानी में भर जाती है। जी हाँ श्रोताओं, पहले के जमाने में यहाँ लोग बैठकर मेल मिलाप भी किया करते थे और उन ठंडी हवाओं का मजा लेते थे।

श्रोताओं, पहले हर इलाके में छोटी छोटी नाड़ियाँ बनाई जाती थी ताकि बारिश का पानी व्यर्थ न जाए, लोगों को दूर दूर से पानी न लाना पड़े, पशुओं के लिए पानी उपलब्ध रहे, जमीन का जल स्तर भी बना रहे। जी हाँ श्रोताओं, लेकिन आज जो शहर है मॉडर्न वाटर सप्लाई पर निर्भर हो गया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था श्रोताओं, जब जोधपुर की हर बस्ती अपनी नाड़ी से पहचानी जाती थी। जी हाँ श्रोताओं, नाड़ी सिर्फ पानी नहीं देती बल्कि पूरे मोहल्ले को जोड़कर रखती थी। और अगर कुछ और जलाशयों की मैं नाम लूँ तो उनमें गुलाब सागर, फतेह सागर, महादेव नाड़ी, छोटी बड़ी स्थानीय तलाइयाँ, गांव की सामुदायिक नाड़ियाँ। जी हाँ श्रोताओं, जोधपुर की ये छोटी नाड़ियाँ

श्रोताओं, मारवाड़ में कहा जाता था कि जिस गांव में नाड़ी नहीं वहां जिंदगी आधी। तो इन नाड़ियों का संरक्षण करने में आगे आइए। वर्षा जल संरक्षण, सामाजिक महत्व और पर्यावरण से जुड़ाव में ये नाड़ियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप भी अपनी भागीदारी निभाइए और इन नाड़ियों का संरक्षण कीजिए, जल का संरक्षण कीजिए। जल को व्यर्थ न बहाए और इस गर्मी में अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा। और फिलहाल जोधपुर इन्फोटेनिया कार्यक्रम से दीजिए कविता सांकला को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन

0: एआरए हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएआरए हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, 8 से 12 मई तक हम मना रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सड़क पर चलने के जो नियम हैं उनका पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बातें हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। पहला जो गीत है ये कूली फिल्म का गाना, शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।

0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
0: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
3: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी की बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
1: बाजू

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई करियर

0: इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: तनिया। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बातें जो देती हैं हौसला शब्द जो देते हैं सुकून
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ
1: देना साथ मेरा ओ हम नवा
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी
1: तुम आ गए हो नूर आ गया है
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर
2: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में नीरज के बोल हैं शंकर जयकिशन का संगीत है

ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो,

का ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई जरा देख के चलो

पर ही नहीं नीचे भी भाई। ए भाई जरा देख।

0: संसार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।
1: श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: यह जीत फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है, उससे पता चलता है कि कितनी शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान

और मौज मस्ती होगी। दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे। फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी देकर के पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है। और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है। बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोली होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा। विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा। फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने, कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है, तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहां पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है। तो आप किसी शादी समारोह में गए, कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिसको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना. एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत. शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है. लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है. जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है. चलिए एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है. दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है. ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है. शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है. एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं. निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं. भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है. गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं. मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है. लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहां का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए. उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे. अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है. ख्याल आया और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है. चलिए सौदागर फिल्म

0: रेडियो पर लोक सुरारे रंगा सुरंगियोडो इन कार्यक्रम गणगौर में आप घड़े मान स्वागत और आज रे गणगौर में मैं हूँ आपरे साथे आपरे रेडियो सखी शीतल राठौड़
1: और मैं हूँ पूनम देवड़ा
0: तुम्हा तो धोन्यारा घना घना राम राम। और बिल्कुल आज रे गणगौर जो है वो खास रवेलो लोक सुरारे रंगा सु जठे बात करा लोक गीतारी पर शुरुआत करा इन गीत रे साथे।

0: पूनम जी, एक लोकगीता बाबत एक छंद है। लोकगीत ए प्राण आपणी संस्कृति रा, उघड़े वे चित्राम जन जीवन री कृति व्रति रा। आ गीता रे माए आपणो जीवन बोले, पढ़े बोल जद कान जान बो इमृत घोले। जीवन नीजू प्रकट हुए आई गीता रे पाण, अतीत रो दर्शन हुए पुरखा पाण अपाण।
1: बिल्कुल सही कहो शीतल। और अपने राजस्थान री माटी रे मैंने लोकगीत तो रचिया बसिया है, और इन गीता ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीव तो राखण रो काम करिया करे है अपन अठेरा लोक कलाकार। व्यारे सुरा रे मैंने थार री तपती रेत, ढोल री थाप और मादल रो मीठो ना दे जिको बोलिया करे। ए लोक कलाकार सिर्फ गायक को नहीं होया करे, वे राजस्थान री संस्कृति रा चालता फिरता संग्रहालय है। इनारे कंठ रे मैंने इतिहास सुर में रेगिस्तान री आत्मा बसिया करे है। और अठेरा लोक गायक कलाकार न्यारी न्यारी शैलिया रे मैंने लोक गायन है जिको करिया करे है।
0: बिल्कुल। और आको जीवन यापन है जको वो गायन सुई होया करे। और बहुत सारी जातियां हैं अपन ऐठे, जहाँ लंगा मांगणियार हो गया, भोपा भोपी हो गया, कलावंत है, मिरासी है, ढोली है, दमामी है, खारेड़ है, बोघर है, बाबर है, डोसावसी, गुणसार, फुलवाणी, बोमणिया, भट्टिका, और भी कई अड़ी जातियां हैं जो अपन ऐठे रची बसी है। और वह सदियां सु जो है वारा पुरखा भी पुरखारी जो संस्कृति है, विरासत है, वाने आगे लेन जा रहा है। और गीता सुई जो है आपानी संस्कृति ने भी जो है दुनिया रे सामी राख्या करे है, और आप गुजर बसर भी करया करे
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही क्यों शीतल है। वीर रस रे माध्यम से हो गया या कोई भी

0: मांगलिक गीत हो गया, कोई भी मौके पर तीज त्योहार वाला गीत हो गया, वे सब गाने आप जिको लोगों का मनोरंजन करे करो और इनके साथ ही अपने लोक संस्कृति ने जिको विश्व पटल पर है जिको मंच दिलाया करे।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ पहली तो यहाँ होतो की खाली जो है जातियां गांव थोड़ में ही जो है गानों गावती या गीत गावता है, पर आजकल तो खासकर लंगा मांगणियारी आप अगर बात करा तो बहुत ही कह सका हर जो भी फंक्शन होया करे है, शादी ब्याह है, हमारी जान बन चुका है, बट हमारा गीत है जका बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है, नामी हो चुका है। इन वास्ते आजकल तो फ्यूजन म्यूजिक रो भी जमानो है, हमारे साथ भी जो है अने जोड़ और तरह तरह रा लोक गीत है जका वह गाई जावे है और बनाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही क्यों शीतल, देखो ये लंगा मांगणिया री आप बात करी नी तो एण जी का लोकवादी यंत्र होया करे, वे एण गीता ने और भी मधुर और काना में कर्णप्रिय बना दिया करे, सुनन में इतना चोखा लागे नी एण जी का वाद्य यंत्र री आवाज होवे और इनके साथे जो एण सुरा रा बोल होया करे, वे एण दोनों रो मिलाप है जी को गीत ने बहुत ही चोखो बना दिया
1: बिल्कुल
0: करे।
1: खासकर कामायचा होएगो चंग है और खड़ताल है, बीनरी धुन कह दो, एक कई तरह रा वाद्य यंत्र है जो आर्य गीता ने और भी मधुर बना दिया करे है।

0: राजस्थान री सुनहरी थाली माए लोक कला रा मोती बिखरिया पड़िया है जके धोरा ने लोग रेगिस्तान कहवे है उन धोरा रे कण कण में लोकगीत भरियोड़ा है इन लोकगीता ने आपरे आवाज रे जादू रे माध्यम से दुनिया रे मंच तक पुगावण रो काम करे है आपने अठेरा लोक कलाकार तो आज आपने सगे स्टूडियो में पधार चुके है एक एड़ा ही लोक कलाकार जका अंतरराष्ट्रीय कालबेलिया नृत्यांगना है और इनारे साथ ही लोक गायिका भी है बात कर रहे हैं आपा आशा सपेरा जी री जका सपेरा घराना रो दीपक है जके आपरी कला रा उजासु मुल्क रे सरदा ने लांग दी है तो आशा जी आप लोग घने हेत रख रहे साथे स्वागत है आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में और हेत प्रीसु भरोड़ा राम राम
1: मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ आकाशवाणी पूरी टीम ने कि आज मने वो सुनेरो मौको मिली हो टावारो
0: बिल्कुल आशा जी तो इनसे पहले कि इन भेंट वार्ता की शुरुआत करा तो आप अपनी सुरीली आवाज में मैंने मान श्रोतावार वास्ते एक गीत है जी को गाने सुना दो
1: बिल्कुल

0: बहुत बढ़िया आशा जी, आपकी आवाज में मैंने गीत सुनने बहुत ही चोखो लागे हो, मान श्रोता मैंने भी और माने भी। तो शुरुआत करा आज सफर री, तो आपरा अनुभव, आपरी कला, आपरे संघर्ष की कहानी जाना आपरी ही जुबानी। तो आशा जी, सबसे पहले आप ओ बताओ कि आपरो बचपन और शिक्षा दीक्षा किन तरीका री रही।
1: बचपन तो देखो आ है कि कालबेलिया समुदाय में आपने भी ध्यान है कि घुमंतु जाती है, आज अटेन काले वटे, तो शिक्षाओं तो कोसो दूर रही हूँ, शिक्षा तो हो ही नहीं पाई मारी। पर परिवार में एक ऐडी शिक्षा मिली है जो आज मैं इन मंच माते हूँ, आप लोगों के सामने जो डांस और सिंगिंग री कला हमारे लिए बहुत महत्व रखे, हमारी सबों बड़ी शिक्षा है
2: जी। आशा जी, आपरी कला रे बारे में बात करा तो आप नृत्य और गायन दोनों करिया करो हो, तो बात सबु पहली नृत्य री करा, तो आपने कालबेलिया नृत्य तो विरासत में मिलो ही है, तो इनकी शुरुआत आप कौन सी उम्र करी और पहली बार जब मंच रो सामनो करो तो कैडो का अनुभव रहे हो।
1: कालबेलिया नृत्य हमारे विरासत में मिली उड़ो, मैं बचपन कर रही हूँ, हमारे खून में के मारी माँ बहना मो सब पूरा परिवार ही वही काम करा। और शुरुआती में छोटे छोटे मंच माते, जैसे होटल में प्रोग्राम करनो और शादी ब्याहरा प्रोग्राम करना, पचे धीरे धीरे मैं 2006 में बारलो टूर करियो, अंतर्राष्ट्रीय टूर करियो, उन बाद में मैं कंटिन्यू बारला टूर करवाने लगी।
0: अच्छा, तो कालबेलिया के अलावा भी आप दूजा राजस्थानी लोक नृत्य वे भी करिया करो, तो उनारे बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मन श्रोतावा ने दिला दो।
1: बिल्कुल, जो राजस्थान री पारंपरिक जो जितना भी नृत्य है वो मैं करूं, जैसे तेरे ताली, घूमर, चरी, भवाई और राजस्थानी जितना भी फोक, कालबेलिया के अलावा मैं डांस करूं।
0: अच्छा, तो ये भी आप सीखिया?
1: नहीं सीखिया नहीं, बस और मतलब पारंपरिक की मैं कर रही हूँ सब।
0: अच्छा
2: हाँ। जी, तो अब गायन री बात करा उनसु पहली एक और गीत है जो को आपरी आवाज में सुना दियो।
1: बिल्कुल। ओ बनसा बेगेरा बुलाया थे मोड़ा किस विद आया,

0: एक बार फिर सुस्वागत है आप सबारो कार्यक्रम गणगौर रेमाए और आज आपने साथे है अंतर्राष्ट्रीय कालबेलिया नृत्यांगना और लोक गायिका आशा सपेरा जी। तो आशा जी, जब बात गायनरी करा तो आपरे इन लारी शुरुआत कद हुई और की कर हुई और पहली बार मंच पर गाने रो मौको की कर मिलियो, क्योंकि आप पहली नृत्य में हा तो गायन में आने री कद सोची?
1: कि कालबेलिया समुदाय रा गाना जो है बहुत परंपराओं मारा पिताजी मार माताजी गाता आ रिया है और इन गाना रा मतलब कई मतलब कोई भावुक होवे शादी ब्यावरा भी होवे और कोई एड़े एड़े मतलब कहानी है इन गाना रे लारे। तो मैं मारे पिताजी को पूछती कि इन मतलब कई है, तो पिताजी मैंने पूछता कि बेटा इन मतलब वो है, इन लारे आ कहानी है, इन लारे ओ महत्व है। तो मैं धीरे धीरे धीरे धीरे गाना गाती रही, पर मैं स्टार्टिंग पहली शुरुआत गाने री रिकॉर्डिंग इटली में करी थी। 2016 में मैंने मौको मिली हूँ जब मैं वटे एक पुनमल गाना रिकॉर्ड करी हूँ, वो भी बाहर लो बैंड तो इटली रो और मैं विन साथे गानों गाए हूँ।
2: अच्छा, तो अब तक आप कौन कौन सा लोकगीत है जिका आप गाया हो और आपकी पसंद रो कोई एक गीत जिको आपने चोको लागे वो भी मान श्रोता मन आप सुना दो।
1: बिल्कुल, मैं आज तक बियारा फागणरा सब गाना गा चुकी हूँ।
2: अच्छा,
1: हाँ,
2: जो भी लोकगीत राजस्थान में मैंने प्रचलित है ज्यादातर वे लोकगीत आप गा चुके हो।
1: बिल्कुल,
2: तो चलो जने सुना दो एक और लोकगीत।
1: आपने एक लोकगीत बहुत ही प्यारो सुनू पुनमल जो जिको मैं रिकॉर्ड करी हूँ तो इटली रे मायने और अटे भी दो तीन जगह मैं स्टूडियो में करी हूँ मोटी मोटी जैसे पीआरजी कंपनी वगैरह।
2: अच्छा,

0: जी
1: बहुत
0: आशा जी,
1: बढ़िया।
0: आपकी आवाज तो इतनी सुंदर है ही है, और आपके गाना में जकी बीनरी धुन होया करे नी, वह भी मन बहुत चौकी ला गया करे,
2: बहुत
0: गाने में
2: धन्यवाद,
0: चार चांद लगा देवे है।
2: बिल्कुल बहुत
0: तो
2: धन्यवाद।
0: आप जब स्टेज पर लाइव गाओ या स्टूडियो में रिकॉर्ड करो, तो उनमें आपने कितो फर्क ला गया करे?
2: मैंने बहुत फर्क लागे देखो, हालांकि एक ओरिजिनल आवाज भी होवे और एक रिकॉर्ड कर भी गावा, तो मारो तो वही कहना है कि हमेशा जो भी लोग मैं कुछ भी गानों गाऊं, गॉड गिफ्ट है मारे लिए और भगवान भी दया नहीं कि मैं जद भी गाऊं तो वह सब लोग मैंने सगड़ा यही पूछे कि आशा जी आप तो बिना स्टूडियो बिना माइक की आपकी तो वॉइस बहुत है।
0: तो आप जद गायन और नृत्य दोनों की प्रस्तुति एक सागे करया करो, तो सामंजस्य के कर बिठाओ हो, और जद हजारों लोग आपकी प्रस्तुति देख तालियां बजावे तो केड़ोक महसूस होए?
2: कि ऑडियंस एड़ी होवे कि मतलब आपने, मैं बताऊं कि मैं अभी जैसे गानों गा रही हूं तो मैंने वो ऑटोमेटिकली डांस भी आ जावला, केड़ी केड़ी ऑडियंस एड़ी बैठी रहे कि आप ऑटोमेटिकली झूम जावला बटे मन नेड़ो होवला कि डांस करता रहो गानों गाता रहो।
1: वो ऑडियंस कहती रहे वंस मोर वंस मोर।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बिल्कुल। अलग अलग देशों में भी आप प्रस्तुति दी हो, तो दर्शकों प्रतिक्रिया के बारे में जो भी अनुभव आप रह रहे हैं वे भी हमारे साथ आप थोड़ा सा साझा करो कि आपने कैडो महसूस हुए। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के दर्शक है, वे अलग
2: बिल्कुल
1: अलग प्रतिक्रिया देवे, तो कई अनुभव आप रह रही हो?
2: आज मैं मतलब देख लो कि मैं इंडिया रे मैंने तो प्रोग्राम कर ही हूँ खूब सारा, पर मैं 100+ बाहरली कंट्री में भी प्रोग्राम कर लिया। अब लोगा ने बटे अपने म्यूजिक अपने गाना रो इतो ध्यान नहीं पड़े, पर वे बहुत बारीकियों इंजॉय और इन चीज ने समझे कि कई गा रही है, बहुत मान एकदम मतलब शांत टोन सुने के कई गा रही है और इन चीज ने बहुत ज्यादा फॉलो भी करे। कालबिलिया कल्चर ने बाहरला लोग बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स देवे और
1: अच्छा।
2: गाना गीत ने डांस ने।
0: तो अब तक आप कितना देशहरी है जकी यात्रा कर चुके, कट कट प्रस्तुति दे चुके हो, कोई खास देश है जगह जटे आपने बहुत ज्यादा अच्छा लागे हुए बारे बारे में बताना चाहो?
2: देखो मैं मतलब आपने बताऊं कि अमेरिका तक मैं गई हूँ तो 100+ देशों रे मैंने मैं प्रस्तुति दी हूँ। ज्यादातर मैंने इटली रे मैंने मैं कम से कम 4 साल रही हूँ, 6 महीना वटे 6 महीना इंडिया, और मैं वटे रब काफी स्टूडेंट ने डांस सिखायो गाना सिखाया अपनी जो मारवाड़ी भाषा है वो भी सिखाई।
1: अच्छा। तो आपने कहो लगे जब आप बाहरला विदेश जिका लोग है वह आप सिखाओ और वे अपनी संस्कृति ने अपना अपना वे, तो वी टाइम आपने कहो महसूस हो
2: मैंने बहुत प्राउड फील हुआ है कि जो बाहरला जी को वेस्टर्न कल्चर ने नहीं छोड़न अपर और राजस्थानी कल्चर और मोस्टली कालबिलिया जो कल्चर है इन्होंने अपना रही है, तो हमारे लिए बहुत प्राउड फील रही बात है।
1: बिल्कुल। तो थोड़ी सी जानकारी आप भी दिला दो कि आपकी कला से जुड़ा कौन कौन सा सम्मान और पुरस्कार है जिका आपने मिलोड़ा है और आपने वास्ते सबसे खास रिया है वे?
2: काफी पुरस्कार मिले है मैंने, बहुत सब पुरस्कार मिले है जिन्हों मैंने हर जगह जाऊं तो मैंने बहुत सम्मानित भी करे लोग और पुरस्कार भी काफी मिले हैं।
0: बिल्कुल। आपने जो है सरकारी तरफ से भी कई तरह का पुरस्कार मिला है, विदेशी मंच माते पे भी आप बहुत सारा पुरस्कार है जगह जीत चुके हो, तो बहुत ही गर्व की बात है कि इतना सम्मानित व्यक्तित्व आज हमारे साथ इन स्टूडियो में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप रुत। और अब देखो आप फिल्मा में भी जो है आपने गाने रो मौको मिलियो है, तो जो गीत है खास आपने इन में मौको मिलियो गाने रो, तो उन रो अनुभव कैडो करियो, किन तरीके रो आप रो अनुभव हो कि फिल्मा में गाने रो कोई अनुभव अलग व्या करे, या आप ज्या रोजाना जगह स्टूडियो में है गावता विण में कितो फर्क आपने लागियो?
2: एडो एक ही जो लारली मूवी आई थी जॉन अब्राहम री वेदा मूवी 2 साल पहली, विन टाइम मैंने डायरेक्टली वे ऑफर करियो वे फोन करियो जो डायरेक्टर है वे

0: बिल्कुल आशा जी, ऐडो लाग रही है कि जेठ महीना में भी फागण आएंगे
1: जी। और आप बतायो कि आप बहुत विदेशी स्टूडेंट है आपरा, और भी दूजा अठहरा भी जगह स्टूडेंट है, वाने भी आप सिखाया करो हो डांस। तो जब आप एक स्टेज परफॉर्मर रे तौर पर आपने देखो और एक टीचर रे तौर पर आपने देखो, तो दोनों आरी भूमिका में आपने कितो अंतर लागिया करे और दोनों रो अनुभव आपरो क्या डोक रहा करे है?
2: देखो, स्टेज वाली लाइफ तो एक प्रोफेशनल हो जावे कि मैं एक गायिका हूँ और मैं परफॉर्म कर रही हूँ पब्लिक वास्ते, पर टीचर वालों एक अनुभव एड़ो रहे कि विदेशी जिमें भी बारला लोग हैं और विदेशी सहेलिया ने मैं सिखा रही हूँ नहीं, तो मैंने वो मोमेंट बहुत प्यारो लगे कि ए लोग कितनी बारीकी तरीके हर चीज ने फॉलो कर रही है। आज तक मैं बारला गोरा गोरिया ने 11,000 स्टूडेंट ने डांस सिंगिंग और मारवाड़ी भाषा सिखा चुकी हूँ।
0: अच्छा, तो जब आप भाषा की बात कर रहे हो तो आप तो मारवाड़ी भाषा वैन सिखाई, तो वैन सिखा व्याणी भाषा जो समझने में आपने कोई परेशानी भाषा संबंधी कोई आई?
2: मारवाड़ी में कहावत है कि रंगत रो संगत है, जिनने जेड़ा भेड़ा रे वहां विनो थोड़ो किकर के जिकर गुड़ ज्ञान तो आई आई। तो पहली मने तो प्रॉब्लम होता कि मने इंग्लिश नहीं आवे सही ढंग, हिंदी नहीं आवे, मैं कई करूला। पर बाद में धीरे धीरे मैं क्यों हो जो देखी लाग इंग्लिश में बात करनी, टूटी फूटी बोलो पर बोलो। धीरे धीरे धीरे धीरे अटे कई अपन है जैसे इंडिया रे महीने किन्ने भी एकदम जजमेंट कर ला कि इन्हें तो हिंदी नहीं आवन इंग्लिश नहीं आवन बोल रही है, मतलब कितने जजमेंट हो जावे। पर मैं इन चीज ने मैं क्यों, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो कोई पता नहीं, ऊपर जान बेरो एन जी आवाज कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बोलनी तो बोलनी, तो मैं टूटी फूटी बोलती बोलती बोलती अब देखो आज मैं इटिया

0: इटालियन बोल दूं, फ्रेंच बोल दूं, स्पेनिश बोल दूं, मतलब जटेरा जितना अंग्रेज आवानी बिना ने समझा सकूं, एक तो
1: अच्छा
0: कॉन्फिडेंस है भगवान दी देनु।
1: जी, तो आप रा जितना भी स्टूडेंट रहा में कोई एडो खास स्टूडेंट आप रो जो आपने लगे कि आप सीख रहे जो है बहुत ज्यादा नाम कमा रही हो?
0: घनी कमायो जापानीज स्टूडेंट है मारी बारली, वह बहुत अच्छो नाम कमायो, इन्होंने लोग बारे अब बटों जापान वाटे बुला रही है।
1: जी, राजस्थानी मधु मायूमी रे नाम सु आपा माने जाना हाँ, जापानीज आर्टिस्ट है, टोक्यो सु है वे, और बहुत ही अच्छो नाम कमा रिया है, राजस्थानी संस्कृति ने बहुत फॉलो कर रिया है, और हमारे डांस ने और गायकी ने भी लोग सराह रिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि बारला जगह स्टूडेंट है वह आपसू सीखने आया और इतो अच्छो नाम आज कमा

0: जगह स्टूडेंट है वह आपसु सीखने आया और इतना अच्छा नाम आज कमा रहा है।
1: बिल्कुल,
2: तो बिल्कुल आशा जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया आपकी कला और करियर ने किन तरीका से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो देखो डिजिटल रो जमाना है, तो इनमें आपकी कलर में ने कई प्रभाव आपने देखने मिल रहे हैं।
0: कि कहीं ना कहीं मैं राजस्थानी संस्कृति ने ज़्यादा फॉलो करूँ। देखो एक हालांकि वेस्टर्न कल्चर होया करे, आजकल रहा लोग डीजे पार्टी वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेवे, पर जो जो लोगों ने मने मने लगे कि भाई मैं प्योर एकदम अपने राजस्थानी कल्चर ने लेन जा रही हूँ, नहीं तो इन लोगों को बहुत प्यार है।
2: अच्छा
0: जी, और आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम भी जो आयाड़ा लोक कलाकार है वने ज्यादा मिल रही है, तो कह सका कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो को कठिन कठे अच्छो काम भी कर रहे है आपके वास्ते। तो आजकल की नई पीढ़ी रिमिक्स फ्यूजन और डीजे रे संगीत ने ज्यादा पसंद कर रही है, तो आप आपकी माटी रे गीता सु वने जोड़न रे वास्ते कहीं कर सको हो या कहीं कर रहा हो? मारो तो यही कहना कि मैं हमेशा मतलब जो रियल म्यूजिशियंस हैं, बाकी डीजे धमाकों थोड़ी मैं अलग रहूं, बाकी रियल म्यूजिशियंस रे साथे हमेशा ये गाना जिंदा रखूं और गाऊं और आगे तक पहुंचाऊं, मारो कहना है।
2: तो बिल्कुल इनरे साथे एक और गीत आप सुना दो मान श्रोतावान है आपकी सुरीली सी आवाज में।
0: बिल्कुल जरूर, जदे अपन राजस्थान रे मायने बीन तोरण ने जावे नी शादी रे मायने, तो हंगू पहली तोरण रो गानो आया करे, तो दर्शकों ने भी बहुत वो गानो अच्छो लागे और सबारे लिए और आपरी टीम रे वास्ते भी मोई गानो तोरणी सुनू दो लाइन।

0: मेहमान आशा सपेरा जी, जिनका अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्यांगना है और लोक गायिका भी हैं।
1: तो भविष्य में आशा जी आपरी कई योजनावां हैं, जो आप एड़ो कोई सपनो है जो अबार ताई पूरो नहीं हुआ है और आप चाहो कि आने वाला समय में वो पूरो हो जावे?
2: मारो सपनो इस तो कि मैं हमेशा चाहती थी कि भाई कालबिलिया समाज रे मन ने बच्चा है वे पढ़ लिखन। देखो हालांकि कला संस्कृति गाना बजाना एक अलग चीज है, पहले समय में लोग नहीं पढ़ाता लिखा था और मारा एक मैसेज है सबारे वास्ते कि कालबेलिया समुदाय का बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, वो मारो सपनो है।
1: तो इन रे वास्ते आपकी करना चाहो सोचो है कि
2: बिल्कुल मैं यूं ही सोचू कि कोई मैं मतलब स्कूल खोलूं जिन्हें मैंने बच्चा जो बाहर लाए गांव रहा है वे पढ़ सके लिख सके और आगे बढ़ सके। और मैं सरकार ने भी अनुरोध करूं कि कालबेलिया समुदाय और लोग माते थोड़ा ध्यान देवे।
1: जी बहुत बढ़िया।
0: तो आशा जी आपकी बात सुनने मतलब माने श्रोता माने तो चोखो लाग ही रहे इनके साथ ही आज आकाशवाणी स्टूडियो जो आपकी गीता सुए जी को जयमान हो रही है। तो जितना भी श्रोता आज इन कार्यक्रम ने सुन रहे हैं खासकर आजकल ये पीढ़ी जो इन क्षेत्र में मैंने करियर बनानी चाह रही है आप लोग बिना ने आपका ही कहनी चाहूला।
2: मैं न्यू पीढ़ी ने आई कहनी चाहूंगी देखो आप हर चीज करो बट एक संस्कृति जो हमारी मातृभाषा और राजस्थानी भाषा है उन्हें जीवित रखो। क्या पकट बारे जा रिया हो या कुछ भी कर रिया हो तो लोग अगर महाराष्ट्र जावला तो वे भी अपनी भाषा रो प्रयोग करेला। तो इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो पर अपनी मातृभाषा और संस्कृति रो ध्यान रखो। मैं हर लोग ने आ बोलनी चाहिए।
1: तो जाता जाता आप लोग एक और गीत है जो को माने श्रोता माने सुना दो।
2: बिल्कुल।

0: बहुत खूब आशा जी, बहुत श्रोता आज आपने सुन रहे हैं। तो एक सवाल रेडियो से जुड़ियो तो भी आप सुकरला जाता जाता कि आकाशवाणी का 90 वर्ष पूरा हो रहा है, तो इन विषय पर आप का ही कहनी चाहो आपकी तरफ से?
1: मैं बहुत शुभकामनाएं देनी चाहूँ कि 90 वर्ष रे मौके माता आपने ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज मैंने आटे इन चीज रो मौको मिलियो कि मैं आप पूरी टीम अटे मिली, इन वास्ते बहुत बहुत आकाशवाणी रो धन्यवाद देनी चाहूँ।
2: तो आज इन स्टूडियो माते पधारिया हा कालबेलिया नृत्यांगना और लोक गायिका आशा सपेरा जी, और आप सु इतनी सारी बाता करीम है, और आपरे जीवन रे बारे में जानने रो मौको मिलो, आपरी कला रे बारे में जानने रो मौको मिलो, और साथ ही साथ आपरी आवाज में लाइव माने बैठने नठे इतनी अचोखी आवाज सुनने मिली, तो आप इन स्टूडियो में पधारिया, इन वास्ते आपरो घणो घणो आभार।
1: धन्यवाद।

0: तो पूनम जी, आज गणगौर में बात कर रहे हैं लोकगीता री। तो
1: बिल्कुल सही बात की शीतल। और लोकगीत है वो अपनी भाषा रो जीवित कोश है। और अड एक कहावत भी है अपनाटे कि गीत बिना राजस्थान बिना सुरारो गान। मोबाइल रो जमानो है पर लोकगीत आज भी अपने मिट्टिया को नहीं है। आज भी अपने जो भी बूढ़ा बुजुर्ग है या जो आवन वाली पीढ़ी है वेने भी सिखा रहे हैं, और वेने जबान पर आज भी लोकगीत है जिसको सुनने मिल रहा है अपने।
0: बिल्कुल, हर मौके माते अपने अठे लोकगीत तो है ही है। जहाँ की भी अपने कोई भी सामाजिक पर्व है, विण माते है, कोई प्रेम विरह रे माते अपने अठे लोकगीत है, और वीर रसु भरोड़ा भी लोकगीत व्या करे है। लेकिन बात करा कोई खास लोकगीत आ रही तो अपने अठे कई लोकगीत है जो आपकी एक अलग ही पहचान बना रखी है। जहाँ की देखो मैं कहूँ ओड़ियों, ओड़ियों री अगर बात करा तो कोई भी कोई री जद याद आया करे है तो ओड़ियों गीत गायो जाया करे है। खासकर बेटी री विदाई रे टाइम पर भी ओड़ियों वो गाई जे कि कंवर बायरी ओड़ियों आवे हो राज। और इनी तरह से अपने अठे इंडूनी माते भी गीत है, जद पानी भरने जावती लुगाया मटके ने सिर पर टिकाने वास्ते मटके रे नीचे इंडूनी रो प्रयोग कर्या करे है। तो बिन माते भी अपने अठे गीत है कि गम गई इंडूनी। तो और इनी तरीके से कांगसी माते भी अपने अठे गीत है। तो कह सका छोटी छोटी चीजा रे माते भी अपने अठे गीत लोकगीत बन्योड़ा है जो इन्हें और भी बहुत ही सुंदर बना दिया करे
1: बिल्कुल
0: यहाँ
1: सही
0: बता ने।
1: क्यों। घोड़ी गीत है जिको बरातरी निकासी पर गायो जाया करे। चिरमी गीत है वो वधु आपरे ससुराल रे महीने आपरे भाई और पिता री प्रतीक्षा रे महीने चिरमी रे पौधा ने संबोधित करते टाइम गाया करे। जच्चा गीत बालक रे जन्मोत्सव पर गाये जाया करे। जीरो गीत तो वो एक किसान जी की नारी
0: जी
1: होया
0: जी
1: करे। वाह खेती री जी की आने वाली कठिनाई है वेने व्यक्त करने वास्ते गाया करे। और ढोला मारो रे गीत हो गया, तेजा गीत हो गया, पंछीड़ा गीत हो गया, पणिहारी गीत हो गया। इंड साथे सुवटियो गीत है, पपैयो है, मोरियो है, पशु पक्षियों और जुड़ियोड़ा गीत भी अपन अठे बहुत सारा है शीतल।
0: बिल्कुल। और ऊँट रे आभूषण यानी गोरगबन माथे भी अपने अठे गीत व्या करे है। गुल्लो त्योहार माथे भी अपने अठे गीत है। घूमर तो है ही है। साथ ही साथ अपने अठे केसरिया बालम री अगर बात करें अपने राज्य गीत जको है वो तो है ही है। रजवाड़ी गीत भी है वो। और साथ ही साथ ये गीत रे पीछे प्रीतम ने घर आवन रो संदेश भी जो है लुगाई दिया करे है। लेकिन आजकल वो जो गीत है वो अपने मेहमान रे वास्ते फेमस हो गयो है। इनरे साथ ही अपने अठे झुरावा गीत है, पणिहारी तो है ही है, पीपली गीत है, बन्ना बन्नी रा गीत है, बिछोड़ो है, मोरियो है, राती जगे रा बहुत सारा गीत वया करे है, हिचकी है, कोई री याद आया करे है, हिचकी आवे तो विण माते भी अपने अठे गीत है। तो कह सका है जो का गीत है वह अपनी संस्कृति ने और भी सुंदर बना दिया करे है।

0: तो आज रीन लोक सुरारे रंग सुरंगियोड़ा कार्यक्रम री प्रस्तुति राजेश लामरोरी और कार्यक्रम रो समय भी अटे समापन पर आई गयो है तो आप दोनों सखिया शीतल राठौड़ और पूनम देवड़ा ने दरावसी
1: चाला राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही

0: रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे

0: हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के

0: संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का

0: मेरा छोटा सा बिजनेस है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप? किस तरह से होता है ये सब?
0: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
1: अच्छा, तो
0: मैं
1: ये
0: वहीं से कर।
1: अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
0: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
1: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
0: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
0: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
1: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये
0: हाँ।
1: कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
0: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
1: जी,
0: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है।
1: जी, तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। तो
1: जी।
0: ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल। अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही हैं।
0: अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें भी कई वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल
1: सही कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है। तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला। मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल की शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: कार्यक्रम हेलो सहेली में अब एक अंतराल का समय।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी सखी बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन, कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे हैं बहुत सारे।
0: अरे वाह,
1: आम जाके नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत सारे जी।
1: हाँ, और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाली जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: पालदा नाका इंदौर से हसीना भी, तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, छप्पन दुकानें।
1: जी जी, बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, वो साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी, तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी, सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती है ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ, ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: रेडियो अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। हाँ, कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जिनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छा, अपना सही
0: है। बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है ना, कितना तो कैसा मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुन रहा
0: है। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले गुलाबी सुराया लग मुझे नजरिया है, लता जिंदा है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिक्की से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा ये मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता
0: जी,
1: जानकारियां भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ की उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत।
0: जी हाँ,
1: और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल हो गई।
0: जी,
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और सखी सहेली सुनना यही में
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है। आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पशवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है, तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं, तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है?
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
1: सीख रही हूँ इस वक्त, तो
0: सीख रहे हैं
1: अपनी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं
0: सिखाने?
1: नहीं शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं और कथक में भी। एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है। ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम
0: आपने,
1: कुछ भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत् तत् है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की।
0: क्या बात
1: कि
0: है।
1: वो जैसे बोलती थी, थई जोर से मारो, तत् लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल सही
1: थोड़ी
0: कहा।
1: तो अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसी ही चाहते हैं जैसी है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: पर
0: सही।
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है ना?
1: हाँ, इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है,
0: जी
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ।
0: जी,
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी,
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी,
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत् तत् थुन थुन तिग्दा दिग दिग है, तत् तत् थुन थुन तिग्दा दिग दिग है, तिग्दा दिग दिग है, तिग्दा दिग दिग है, ता थे तत् तत् है, तत् तत् है, तत् तत् है। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी, तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मुंह

0: वाणी अच्छे से याद है। तो बताइए झंकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिक्चर का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी,
1: बहुत
0: जी,
1: अच्छी
0: जी,
1: लगी
0: जी, वो बहुत सुंदर गीत है। तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में
1: इस अच्छा था और बड़ा भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: ये निंदाई खुदाई है, तो कोई चारा वारा डालना है,
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी है?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी
1: है
0: है
1: ना, है भैंस है।
0: क्या है वहाँ पर पशुधन
1: भैंस
0: में?
1: है, भैंस।
0: भैंस है? कितनी भैंसे हैं वहाँ?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: 2 गाय 2 भैंसे। तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार,
1: मैडम,
0: अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी
0: चारा
1: भी
0: देने
1: बहुत है,
0: का।
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का

0: तो ध्यान रख ही रही है, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ,
0: रह सके, बैठ
1: छाँव में
0: सके।
1: गंदे रहते हैं और उनको चारा पानी वानी टाइम टाइम से खिलाते हैं।
0: जी, तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं फिर से आपको भोजन बनाना
1: फिर
0: होता
1: वो वहां
0: होगा।
1: पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है। तो चलिए
1: हाँ
0: सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: तो कितनी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से। मनीषा जी जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं?
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलती थी कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम वाला गाना सुनवाती थी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेम लता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम होती है ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02268670288 यानी 02228670288 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलस कर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

0: वहीं लौटकर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी? आखिर मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की। सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तब घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।
1: तो कितनी अच्छी है, तो कितनी

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लब्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरो के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, मां की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ पे लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कार्टून सी जिंदगी पाई है,

उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी है उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुंदी आंखें अपनी मां को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल

मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए? जज ने अपने फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हो। महीने भर डर के साये में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश के बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर ये अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सुनी आंखें मेरा

हिमाचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कस कर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था।

उस औरत की छाती पर सिर रख कर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी, शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई, उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आई, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक मां की बेटी हूं। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा, अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगर्गी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सान सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

0: हेलो दोस्तों, फ्राइडे इवनिंग का वाइब सेट हो चुका है। गर्मी भी फुल फॉर्म में है, आईपीएल की डिस्कशंस भी चल रही है और स्टूडेंट्स और यूथ का फोकस कभी करियर वैकेंसीज पर होता है तो कभी वीकेंड प्लान्स पर। मैं हूँ अदिति मर्डिया और अगले कुछ वक्त तक हम आपके साथ रहेंगे एकदम लाइट, फन और रिलेटेबल कन्वर्सेशंस के साथ।
1: बिल्कुल सही कहा अदिति। फ्राइडे इवनिंग यानी वीक का सबसे रिलैक्सिंग मूड। क्लासेस खत्म, ऑफिस लॉग आउट और अब टाइम है पूरे एंटरटेनमेंट का। तो वीकेंड की बिगनिंग हो, चाय या कोल्ड ड्रिंक हाथ में हो और आईपीएल की बातें ना हो ना, तो इवनिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी लगती है। यहाँ बातें होगी यूथ लाइफ की, समर सर्वाइवल की, ट्रेंडिंग टॉपिक्स की और उन सिचुएशंस की जहां हम सब साइलेंटली बोलते हैं, यार ये तो मेरी ही लाइफ चल रही है। कभी मोटिवेशन मिलेगा, कभी लाफ्टर और कभी वो बातें जो डायरेक्टली दिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि आज की इवनिंग होने वाली है फुल स्पोर्ट्स, फिल्मी और एंटरटेनिंग।
0: बिल्कुल नितेश, तो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हॉस्टल में रिलैक्स कर रहे हैं या ऑफिस से घर लौट रहे हैं या घर पर फैन के नीचे समर से फाइट कर रहे हैं, तो बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए।
1: क्योंकि अगले कुछ वक्त तक हम लेकर आए हैं कन्वर्सेशन, अपडेट्स और वाइब्स बिल्कुल यूथ स्टाइल में, सिंपल, एनर्जेटिक और दिल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शाम आपके नाम ओनली ऑन FM 102.1 युवानी पे, नितेश और अदिति के साथ।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी में, जिसे आप एंजॉय करें ओनली ऑन 102.1 पे नितेश और अदिति के साथ। अदिति, फ्राइडे स्पेशल युवानी चल रहा है और फ्राइडे आ चुका है, यानी ऑफिशियली वीकेंड्स मूड ऑन हो चुका है। कॉलेज असाइनमेंट को थोड़ा सा साइड में रखिए, ऑफिस मेल्स को म्यूट करिए और चिल मूड में आ जाइए।
1: बिल्कुल, क्योंकि वीकेंड हो, फ्री टाइम हो, ठंडी हवा हो और आईपीएल की बात ना हो तो लगता है इवनिंग में कुछ तो अधूरा है।
0: बिल्कुल, और आज का मुकाबला भी काफी एक्साइटिंग होने वाला है, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स।
1: और ऑनेस्टली आईपीएल का असली मजा फ्राइडे नाइट पे आता है, फ्रेंड्स के साथ मैच प्रेडिक्शंस, मीम, स्नैक्स और हर ओवर पे इमोशंस।
0: वैसे अदिति, कल का मैच भी किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम ही नहीं था।
1: बिल्कुल, आरसीबी वर्सेस एलएसजी मैच में रेन इंटरप्शन ने भी फुल एंट्री मारी थी और प्रिंस यादव ने किंग कोहली को अराउंड 140 किलोमीटर पर आर की फीरी बॉल पर क्लीन बोल्ड करके फैंस को शॉक कर दिया था।
0: बिल्कुल, और उसके बाद मिशेल मार्स ने भी बैटिंग नहीं की, सिक्सेस की रेनफॉल स्टार्ट कर दी।
1: और ऋषभ पंत का वो बैट स्लिप मूवमेंट सोशल मीडिया का तो फेवरेट मीम मटेरियल बन गया है वो।
0: तो आज भी रेडी हो जाए क्योंकि एक और एंटरटेनिंग आईपीएल इवनिंग के लिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, इंडिया का बिगेस्ट इमोशंस है। और इसी इमोशंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले म्यूजिकल ट्रैक की, और क्रिकेट की बातें अभी बाकी रहेगी ओनली ऑन FM 102.1 पे नितेश और अदिति के साथ।

0: नितेश, इससे पहले हम आईपीएल की बात कर रहे थे, तो आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर की टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने गुरुवार को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को टेबल टॉपर बनने से रोक दिया। बेंगलोर की टीम अब भी तीसरे स्थान पर है।
1: बिल्कुल सही कहा दीति, और एक नजर आईपीएल की पॉइंट्स टेबल की ओर लेके चलते हमारे प्यारे से श्रोताओं को। टॉप पर है हैदराबाद 14 पॉइंट्स के साथ, और वही दूसरे स्थान पर है पंजाब 13 पॉइंट्स के साथ, और तीसरे स्थान पर है बेंगलोर 12 पॉइंट्स के साथ, और चौथे स्थान पर है राजस्थान 12 पॉइंट्स के साथ, और गुजरात भी पांचवें नंबर पे है 12 पॉइंट्स के साथ। और वही आज के मैच की बात करें तो आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स का रहेगा। टीवी का रिमोट है ना, उसको रेडी रखिए, फोन चार्जिंग मोड पे लगा दीजिए और बने रहिए ओनली ऑन FM 102.1 पे नितेश और अदिति के साथ। चलते हैं नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: श्रोतंस, प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट फ्राइडे स्पेशल युवानी प्रोग्राम में, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं नितेश और अदिति के साथ ओनली ऑन एफएम 102.1 पे। और अदिति, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़े फियर की बात करें तो वो है गणित, यानी मैथ्स। और ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कई लोगों के दिमाग में स्कूल की घंटी, कॉपी के पीछे लिखे फॉर्मूले और एग्जाम का डर एक साथ वापिस आ जाता है।
1: बिल्कुल सच में नितेश, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, कभी कभी लगता था जैसे जिंदगी नहीं कोई मैथ्स का बुलबुलाया चल रही हो।
0: और सबसे बड़ा सवाल, जिस गणित को सीखने में हमने हजारों घंटे लगाए, क्या वो सच में हमारे रियल लाइफ में उतना काम आती है?
1: आज दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद हम गणित को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं और उससे भी ज्यादा गलत तरीके से उसे जज कर रहे हैं।
0: क्योंकि हर स्टूडेंट का टैलेंट सिर्फ नंबर से तय नहीं हो सकता। कोई म्यूजिक में जीनियस होता है तो कोई आर्ट में, तो कोई कम्युनिकेशंस में और कोई आइडियाज में।
1: बिल्कुल, लेकिन स्कूल लाइफ में कई बार मैथ्स मार्क्स ही इंटेलिजेंस का स्केल बन जाते हैं और वहीं से शुरू होता है कॉन्फिडेंस का प्रेशर।
0: हालांकि रियल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आता है लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग।
1: बिल्कुल, जैसे बजट मैनेज करना, टाइम कैलकुलेट करना और बिजनेस डिसीजंस लेना या डेली लाइफ की प्लानिंग करना।
0: मतलब मैथ्स जरूरी नहीं, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझने का सही तरीका।
1: और शायद एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ फॉर्मूला याद करवाना तो नहीं होता, बल्कि सोचने का तरीका सिखाना भी होना चाहिए।
0: तो अगर कभी मैथ्स ने आपको डराया हो तो याद रखिए, मार्क्स आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं कर सकता है,
1: क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक इक्वेशन है जिसका जवाब सिर्फ नंबर से नहीं निकाला जा सकता।
0: तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: हाँ जी, वाणी स्पेशल फ्राइडे की शाम चल रही है और इस शाम हम बातें करते हैं ढेर सारी यूथ ओरिएंटेड टॉपिक पे। और अब जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है शायद हर यंग पर्सन की लाइफ का हिस्सा बन चुका है, हसल कल्चरल वर्सेस मेंटल पीस।
1: हाँ, और आजकल हर तरफ बस एक ही चीज सुनाई देती है, वर्क हार्डर, हसल मोर, डोंट स्टॉप।
0: और धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है जैसे रुक जाना गलत हो, थक जाना वीकनेस हो।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया भी इसी प्रेशर को और बढ़ा देता है। हर दिन किसी की अचीवमेंट, किसी का सक्सेस, किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर लगता है कि हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए।
0: लेकिन अदिति, एक सवाल बहुत जरूरी है, क्या हम सच में ग्रो कर रहे हैं या फिर सिर्फ मेंटली एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं?
1: बिकॉज ऑनेस्टली आज की जनरेशन जो है एम्बिशियस तो बहुत है, लेकिन अंदर से बहुत टायर्ड हो रही है, बहुत थक रही है।
0: बिल्कुल सही कहा। और पहले लोग काम करते थे ताकि जिंदगी अच्छी हो सके, और लेकिन आज जो लोग काम कर रहे हैं वो जिंदगी पोस्टपोन कर रहे हैं और सिर्फ काम के लिए।
1: बिल्कुल सही, और सबसे डेंजरस चीज ये है कि हमने स्ट्रेस को नॉर्मल मान लिया है।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर कोई बिजी है तो सक्सेसफुल लगता है, और अगर कोई रेस्ट कर रहा हो तो लगता है भाई ये कितना फ्री है।
1: लेकिन हर वक्त प्रोडक्टिव रहना पॉसिबल तो नहीं है ना, हम भी आखिर इंसान है, कोई मशीन नहीं।
0: मेंटल पीस का मतलब लेजी होना भी तो जरूरी नहीं है।
1: और पीस का मतलब बस इतना है कि आपकी सक्सेस के साथ आपकी खुशी भी बची रहे,
0: कभी कभी हम करियर बनाते बनाते खुद को ही लूज कर देते हैं।
1: और फिर एक वक्त आता है जब अचीवमेंट्स होती है लेकिन सुकून नहीं होता। तो चलिए इसी सुकून को आपको हम डिलीवर करते हैं इस सॉन्ग के साथ।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: हितेश, इस गाने से पहले हम जो बात कर रहे थे कि जो हसल कल्चर है वर्सेस मेंटल पीस है, उससे उसके लिए जो हमको भागदौड़ करनी पड़ती है, उसके लिए हमको घर से बाहर निकलना पड़ता है, और घर से बाहर निकलते ही तेज धूप, गर्म हवाएं, और बाहर निकलते ही इंस्टेंट टैनिंग।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन चाहे कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो या डेली वर्क पे, घर से तो बाहर निकलना ही पड़ता है।
0: ऐसे में लोग अक्सर ना सनस्क्रीन और पानी की बात करते हैं, लेकिन एक चीज जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वो है हमारी आंखें।
1: जी हाँ, तेज धूप में मौजूद अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज आंखों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है।
0: कई बार धूप में ज्यादा रखने से आंखों में जलन, रेडनेस, इचिंग और ब्लरी विजन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अदिति, और लॉन्ग टर्म में ये लापरवाही आंखों से जुड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स को आप भी रिस्क बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल, इसलिए जब भी बाहर निकले ना दोस्तों आप, तो एक अच्छी क्वालिटी के यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस जरूर पहने,
1: और साथ ही लगातार धूप में रहने से बचे और आंखों को हाइड्रेट रखने के लिए पानी भी भरपूर पिए,
0: क्योंकि कूल दिखने के साथ साथ आंखों की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है।
1: तो इस समर सीजन फैशन के साथ प्रोटेक्शंस को भी बनाएं अपनी डेली रूटीन का हिस्सा।
0: बिल्कुल, और स्टे कूल, स्टे हाइड्रेटेड, और अपनी आंखों का ख्याल जरूर रखिए, जैसे हम रख रहे हैं आपका ख्याल इस सॉन्ग के साथ।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं युववाणी में नितेश और अदिति के साथ ओनली ऑन एफएम 102.1 पे। और अदिति, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है।
1: एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है।
0: इस भर्ती के तहत ग्रेड सी और ग्रेड डी के कुल 731 पोस्ट पर भर्ती जारी की जाएगी।
1: और अगर आपने 12वीं पास कर ली है और स्टेनोग्राफी स्किल रखते हैं तो ये आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है, हो सकती है।
0: और वही अदिति, साथ ही साथ अगर एज लिमिट की बात करें तो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल तक के युवा साथी इसे अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल तक के उम्मीदवार इसे अप्लाई कर सकते हैं।
1: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स का किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12th पास होना जरूरी है।
0: और वही अदिति, साथ ही साथ स्टेनोग्राफी स्किल मैंडेटरी रहेगी जिसका टेस्ट स्किल टेस्ट के दौरान लिया जाएगा।
1: ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 मई, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए।
0: एप्लीकेशन और डिटेल्स नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in।
1: और अपने सपनों की प्रिपरेशन आज से शुरू कीजिए
0: क्योंकि मेहनत और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की रियल शॉर्टकट है।

0: क्या बात है अदिति, मोहित चौहान के बैक टू बैक दो गाने, और हर आर्टिस्ट के है ना एक अलग क्वालिटी होती है, और मोहित चौहान की क्वालिटी की बात करें ना आवाज में, तो उनकी आवाज में एक अलग ही सुकून है। और इस गाने से पहले जो हमने गाना लिया था फिल्म हीरोपंती का सोलफुल साउंड ट्रैक रब्बा, तो दिल है ना ऑटोमेटिकली स्लो मोशन में चला जाता है।
1: बिल्कुल सच में, इस गाने को सुनते ही ना सबके माइंड में उस ब्यूटीफुल आइस वाला विजुअल आ ही जाता है, स्नोई माउंटेन्स, ठंडी हवाएं और पीसफुल वाइब्स।
0: बिल्कुल सही कहा देती है, और इस तेज गर्मी से अगर ऐसे सॉन्ग्स लिटरली है ना एसी से ज्यादा राहत देते हैं।
1: वैसे भी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो भला कौन होगा जो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्लान नहीं बनाएगा।
0: बिल्कुल, कोई माउंटेन्स की तरफ जाने का प्लान बना रहा है, तो कोई लेक्स और वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करना चाहता है।
1: और ऑनेस्टली फैमिली के साथ ट्रेवल करने का एक अलग ही मजा होता है, रोड ट्रिप्स, फोटोज, चाय ब्रेक्स और नॉनस्टॉप मेमोरीज।
0: बिल्कुल, और मैगी को भला कौन ही भूल सकता है। और इस समर में ऐसी जगह जरूर जाइए जहाँ थोड़ी ठंडी हवाएं हो, सुकून हो और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम मिले,
1: क्योंकि वेकेशन सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, रिफ्रेश होने का और मेमोरीज कलेक्ट करने का एक परफेक्ट एक्सक्यूज होता है।
0: बिल्कुल, हाल फिलहाल बढ़ेंगे अगले म्यूजिकल ट्रैक की और इंजॉय करेंगे अगले ब्रेक का, क्योंकि जो गीत है वो फिल्म ब्रेक के बाद का है और गीत है अधूरे।

0: हाँ जी, अधूरा गीत है फिल्म ब्रेक के बाद, और धुन है विशाल शेखर की, और इस दिलकश आवाज़ दी है विशाल ददलानी ने। और अदिति, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वैकेंसी की, और जो भी युवा साथी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उनके लिए जो सबसे फ़ायदेमंद रहता है एग्ज़ाम्स के दौरान, वो होते ही इंग्लिश के वर्ड्स और वर्ड ऑफ द डे।
1: बिल्कुल। तो जो दोस्तों आज का जो वर्ड ऑफ द डे होने वाला है वो है टच ग्रास। और नहीं, इसका मतलब लिटरली घास चूना नहीं होता है। इंटरनेट लैंग्वेज में ना टच ग्रास का मतलब होता है भाई थोड़ा रियल लाइफ में भी आ जाओ। मतलब अगर कोई पूरा दिन ऑनलाइन फाइट्स, रील्स या ओवर एक्टिंग में बिजी हो तो लोग बोल देते हैं गो टच सम ग्रास, यानी थोड़ा फोन साइड रखो, बाहर जाओ, फ्रेश एयर लो और रियलिटी से रिकनेक्ट करो। ऑनेस्टली फनी फ्रेज है लेकिन मैसेज काफी रियल है दोस्तों, क्योंकि आजकल हम मोमेंट्स एंजॉय कम और रिकॉर्ड ज्यादा करते हैं। तो आज का दोस्तों आप सबके लिए चैलेंज है लेस स्क्रॉलिंग मोर लिविंग। वॉक पर जाइए, किसी दोस्त से बात कीजिए या बस शाम की ठंडी हवा एंजॉय करिए, बिकॉज लाइफ सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी ब्यूटीफुल है।
0: बिल्कुल सही कहा अदिति। और जो हमारा अगला म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है वो पहली बार आ है, और इस गाने को सुनते ही आपको जो ये आज का वर्ड ऑफ द डे है टच ग्रास, उसे भी आप पहली बार फील करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शाम को टहलने निकलिए, सनसेट देखने के लिए निकलिए, और इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। फिलहाल हम इंजॉय करेंगे अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी, जिसे आप इंजॉय कर रहे हैं नितेश और अदिति के साथ ओनली ऑन एफएम 102.1 पे। अदिति, आज हमने ढेर सारी बातें की और बात शुरू हुई वीकेंड पे और अब बात खत्म होने वाली है वीकेंड्स पे। फ्राइडे इवनिंग में एक अलग ही फीलिंग होती है, जैसे माइंड ऑटोमेटिकली बोलता है बस अब वीकेंड मोड ऑन है।
1: बिल्कुल, और वीकेंड का एक्साइटमेंट तो थर्सडे नाइट से ही शुरू हो जाता है। प्लान्स बनते हैं, ग्रुप चैट्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन फनी पार्ट ये है कि कभी कभी पूरा वीकेंड बस क्रॉलिंग और स्लीपिंग में ही निकल जाता है। फिर संडे नाइट को लगता है यार वीकेंड इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया।
0: तो इस बार वीकेंड को थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, जरूरी नहीं कि हर प्लान एक्सपेंसिव हो। कभी फ्रेंड के साथ चाय और लॉन्ग कन्वर्सेशन भी इनफ होता है भाई, कभी फैमिली के साथ डिनर, मूवी नाइट्स या बस टेरेस पे बैठकर बातें करना भी मूड फ्रेश कर देता है और रियल हैप्पीनेस सिंपल मोमेंट में भी मिल ही जाती
1: है। बिल्कुल, और ऑनेस्टली यूथ लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है ना कि हम एंजॉय करना भी प्रॉपरली भूल जाते हैं। हर मोमेंट को पोस्ट करने की जल्दी होती है, फील करने की नहीं। तो इस वीकेंड थोड़ा स्लो हो जाइए, फोन साइड रखिए जैसे कि टच ग्रास, थोड़ा नेचर एंजॉय कीजिए, किसी ओल्ड फ्रेंड को कॉल कीजिए या फिर बस अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट के साथ इवनिंग वॉक पर निकल जाइए।

0: दोस्तों आज की शाम म्यूजिक मेमोरीज और इमोशनल्स के नाम रही है। उम्मीद है आपने हर गाने को सिर्फ सुना नहीं फील भी किया होगा। फ्राइडे इवनिंग्स की वाइब्स, दोस्तों की बातें और दिल को टच करते ये सॉन्ग्स, शायद इसीलिए म्यूजिक को इमोशनल्स का लैंग्वेज कहा जाता है। कुछ सफर गीतों के साथ आसान हो जाता है, कुछ रिश्ते यादों में भी खास हो जाते हैं और कुछ सामने यूं ही मुस्कुराते हुए दिल के बहुत पास आ जाती है। जैसा अभी आपने सॉन्ग एंजॉय किया, कुछ तो हुआ है, फिल्म कल होना होगा। और मैं था आज की शाम आपका रेडियो दोस्त नीतीश और मेरे साथ
1: मैं अदिति मौर्या। दोस्तों आज के शो की प्रस्तुति और संयोजन था राजेश लामरोड का। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कनेक्टेड रहिए, कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय पर।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन

0: एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

नमस्कार जोधपुर। मई का महीना है और धूप का ये तीखा मिजाज, सच पूछो तो इसकी तपिश ने सबको थका कर रख दिया है। पर जरा ध्यान दीजिए, जब हम छोटे थे तो इसी मई के महीने का सबसे ज्यादा इंतजार होता था। पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब था गर्मी की छुट्टियां, नानी और दादी का वो गांव वाला घर और वो बड़ा सा आंगन। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त राधिका और गुड इवनिंग जोधपुर की इस शाम में आज हम वापस उसी भोले से बचपन में लौटेंगे। धूप तब भी लगती थी पर लू की थपेड़ों से बचने के लिए उनका आंचल हमेशा तैयार रहता था। आइए यादों की इस तिजोरी को खोलते हैं इन प्यारी धुनों के साथ।

श्रोताओं, गर्मी की धूप ना चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, बचपन में वो असर ही कहाँ करती थी। दोपहर में जैसे ही बड़े बुजुर्ग थोड़ी देर आंख मूंदते, हमारी टोली चुपके से निकल पड़ती थी और पड़ोस के पेड़ से कैरी तोड़ने या गलियों में खेलने लगती थी। और पकड़े जाने पर ना वो तीखी और मीठी सी डांट, सच मानिए आज की इन बंद कमरों में हवा में वो सुकून कहाँ जो दादी की।

उस डांट के बाद उनके हाथ से हिले हुए पंखे की हवा में मिलता था। चलिए बचपन की उस मीठी धूप और छांव को इस संगीत में घोलते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

0: नु उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

शाम ढलते ही उन गांव की उस आंगन की रौनक ही बदल जाती थी। तपती हुई मिट्टी पर जब बाल्टी भर के पानी का छिड़काव होता था ना, तो वो जो सौंधी सौंधी खुशबू उठती थी, जैसे पूरा घर महक उठा हो। फिर बिछती थी खटिया और इंतजार होता था रात के खाने का। आज के इस दौर में वो आंगन शायद छोटे हो गए हैं, पर यादें आज भी उतनी ही लंबी और ताज़ी हैं। इन ठहरी हुई धुनों के साथ उन यादों को थोड़ा और करीब आने दीजिए और अगला गीत सुनिए।

और था, और दादी या नानी से कहानियां सुनते सुनते तारे गिनना। तारे गिनते गिनते कब आंख लग जाती थी पता ही नहीं चलता था। आज बंद कमरों में निगाहें बस फोन की चमक पर होती हैं और नींद आंखों से कोसों दूर। खैर, वक्त वक्त की बात है, पर आज की इस शाम थोड़ी देर उस खुले आसमान को याद कीजिए, अपने बचपन को आवाज़ दीजिए और इन सुरों में थोड़ा खो जाइए।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
5: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
6: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।
8: श्रोताओं, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अपना रात गहरी होने लगी है और अपने शहर में भी अब दिन भर का शोर शांत हो चुका है। कैसे अजीब बात है ना, वक्त आगे बढ़ता गया और हम बड़े होते गए, पर बचपन पीछे छूटने की जगह हमारे अंदर कहीं हमेशा के लिए ठहर गया। बस कभी कभी धूल हटाने की जरूरत पड़ जाती है।

श्रोता, उम्मीद है कि गांव के आंगन, नानी दादी की कहानियों और छुट्टियों की इन बातों ने आपके चेहरे पर ज़रूर एक प्यारी सी खुशी ला दी होगी। अब गुड इवनिंग जोधपुर से अपनी दोस्त राधिका को लेने दीजिए इजाज़त। घर के आंगन में बैठिए, अपनों के पास बैठकर दो बातें कीजिए, सुकून मिलेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, बिल्कुल इसी एहसास के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। शाम के 7 बजने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला विविध भारती मुंबई से कुछ ही क्षणों के अंदर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी साथियों का स्वागत है।

0: अभी आपने देशभक्ति गीत सुना, आवाजें एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की थी, गीतकार समीर, संगीतकार एआर रहमान। लीजिए सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के थे। लीजिए अब सुनिए प्रेम रोग फिल्म में सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर को पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

रेली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए अनजान का लिखा गीत फिल्म है महान आवाजें आरडी बर्मन आशा भोसले और साथियों की

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जयमाला के शेष गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।

आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया राजा फिल्म का गीत, बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत पेश खिदमत है कार्यक्रम गुलदस्ता।
1: विविध भारती पर

0: इस गजल के साथ ही गुलदस्ता कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: ये था विविध भारती का नजराना गुलदस्ता।

0: हे भगवान, हर एक नट पर एक नई आवाज।
1: उहा, उहा, उहा।
0: ओह ऑलमाइटी, बस एक अदद फरियाद है, किसी को कंपाउंडर कभी मत बनाना, और बनाए बिना ना चले तो मैटरनिटी होम का बिल्कुल मत बनाना।
1: उहा, उहा, उहा, उहा।
2: जोसेफ।
3: यस डॉक्टर।
2: तुम अभी गया नहीं रोजी के पास?
3: रोजी? अभी जाता हूँ, ये चला वो चला।
2: देखो, साथ लेकर आने का मैं अंदर है।
3: राइट डॉक्टर, साथ लेकर आने का मैं अंदर है। ओह रोजी, आई एम कमिंग रोजी, रोजी।
4: डॉक्टर साहब अंदर हैं क्या?
3: हाँ जी डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल हैं। बैठिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया, ये गया वो आया, वो गया ये आया।
4: गुड मॉर्निंग कंपाउंडर साहब, आप बड़े जल्दी में हैं क्या?
3: बिल्कुल जल्दी में है। बैठिए वर्मा साहब, अभी बैठिए, ये गया वो आया, वो गया ये आया।
4: आप भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या?
5: शायद अंदर ही हैं।

0: अंदर हैं तो आ ही जाएंगे। माफ कीजिएगा, नाचिस को वर्मा कहते हैं
1: और मुझे कुमार।
0: ओ कुमार, आपके कितने साहबजादे हैं कुमार साहब?
1: जी अभी तक तो
0: ओ समझ गया समझ गया। तो आपका पहला तजुर्बा है
1: जी? आपका
0: अजी अपनी बात ही छोड़ दीजिए साहब, तजुर्बे 4 गिनती 5।
1: 5?
0: क्यों डर गए क्या? आपका कसूर नहीं है हुजूर, आपका कसूर नहीं है। जमाना फैमिली प्लानिंग का जो है, हम तो साहब लक की प्लानिंग कर रहे हैं।
1: लक की प्लानिंग?
0: जी हाँ साहब, लक की प्लानिंग। हमारे जोशी के मुताबिक इधर सातवें साहबजादे आए और उधर हमारे।
1: आपका लक खुला।
0: बेशक बेशक, हम तो पामिस्ट्री में पूरा विश्वास रखते हैं।
1: मुबारक हो साहब, लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
0: कैसी बात कर रहे हैं साहब, इंतजार तो करना ही पड़ेगा।
1: अजी साहब, हो सकता है छठे और सातवें साहबजादे एक ही साथ तशरीफ ले आए।
0: अब हाँ, वो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है।
2: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: पता नहीं साला बात करता है कि फिल्म के हीरो हीरोइन के मापिक टेलीफोन पर डुएट गाना गाता है। चार मरतबा ट्राई किया पन साला एवरी टाइम एंगेज।
1: किसको फोन करना है डॉक्टर साहब?
0: अपनी मिसेज को करता है, किसी और को नहीं।
1: वो क्या यहाँ नहीं है?
0: क्या मगजमारी! अरे वो इधर होएगा तो हम उसको फोन करेंगे। बाबा वो पिंजरा पोल मैटरनिटी होम में है।
1: अच्छा, तो आपने एक और मैटरनिटी होम खोल दिया?
0: ओ माय गॉड, क्या मगजमारी! अरे बाबा, पिंजरा पोल मैटरनिटी में वो डॉक्टर नहीं, मरीज है। मरीज है।
1: तभी हम जैसे आप भी रिजल्ट के चक्कर में है डॉक्टर साहब।
0: रिजल्ट? काय का रिजल्ट? कैसा रिजल्ट? अरे कौन सा रिजल्ट का चक्कर? हेलो, यस, डॉक्टर पालनावाला स्पीकिंग। व्हाट, मिसेस पालनावाला? वो इधर नहीं है। आप कौन है? आप प्रेसिडेंट मंडल की महिला है तो? अच्छा, हाँ, आप महिला प्रेसिडेंट नहीं, महिला प्रेसिडेंट का तरफ से बोलता है। पहला आपका महिला मंडल से हमको क्या मतलब बाबा? क्या महिला मंडल का वाइफ तुम्हारा प्रेसिडेंट है? क्या साला मगजमारी है? ऐसा महिला मंडल का प्रेसिडेंट तुम्हारा वाइफ है? देन व्हाट? आज शाम महिला मंडल के जलसा में तुम लोग हमारा मिसेज पालना वाला का टॉक रखना मांगता है, पर काहे को बाबा? फैमिली प्लानिंग पर? अरे तुमको और कोई नहीं मिला? क्या बोला? आने की हालत में नहीं। पन बाबा, तुम्हारा मतलब क्या है? सबका सब किसी दूसरे मैटरनिटी होम की पेशेंट है। पन हम बोलता है अपनी लिस्ट में एक नाम और बढ़ा दो, मिसेस पालना वाला। फालतू मगजमारी, ओइच महिला मंडल, अली महिला मंडल।
2: एक्सक्यूज मी डॉक्टर,
0: सबर करो नहीं जरा।

0: रॉन्ग नंबर।
1: डॉक्टर, डॉक्टर साहब वो आ रही है।
0: आएंगा तो अंदर भेज देने का।
2: पाउंडर साहब, आज डॉक्टर साहब का दिमाग बड़ा गर्म लगता है।
1: वो आई और दिमाग ठंडा, बिल्कुल ठंडा, बर्फ से भी ठंडा।
2: वो कौन?
1: अब बोलो, तुमको इतना भी नहीं मालूम?
2: नहीं।
1: वो परिस्तान की हूर है, मेरे मन की रानी है, दिल को घायल करने का मसाला है। रोजी उसका नाम है, गाल पे तिल पहचान है।
2: अच्छा।
1: रोजी
2: उसका नाम।
1: अरे भाग जाग गई इस मैटरनिटी होम के।
2: कैसे?
1: अरे मेरे ब्रादर, डॉक्टर मैम साहब पिंजरा पोल में, मैडम मिरांडा नर्स बीमार।
2: अच्छा।
1: आया धनवंती का आदमी भाग गया, वो गई काम से। अब बताओ, एक अदद डॉक्टर, एक अदद कंपाउंडर और एक अदद बुढ़ी आया से कहीं मैटरनिटी होम चल सकता है?
2: नहीं,
1: बिल्कुल नहीं,
2: नहीं।
1: लेकिन नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अब आ रहा है।
2: यार किसी तरह डॉक्टर साहब का गुस्सा ठंडा करो तुम बस।
1: अभी तुम जाओ।
2: अच्छा।
1: एक घंटे बाद आना, मौसम बदल जाएगा।
2: अच्छा अच्छा, तो मैं जाता हूँ, एक घंटे के बाद आता हूँ, एक घंटे के बाद।
0: जोसेफ?
1: यस डॉक्टर।
0: ओ आई नहीं?
1: जी नहीं, फिर जाऊँ?
0: क्या मगज मारी किडर पे नहीं जाने का? उफ, आज तो माइंड ही चाउट हो गया।
1: वो आएगी, इन हो जाएगा।
0: ओ शट अप।

रिजल्ट का चक्कर। हवा महल में अभी आपने हरीश दीक्षित की लिखी हुई ये नाटिका सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए वजीर फिल्म का गीत। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में तर्ज बनाई है शांतनु मोइत्रा ने बोल विधु विनोद चोपड़ा के।

अंतरा मित्रा और श्रीराम को अब सुनिए 1920 लंदन फिल्म में। बोली के हैं प्रशांत इंगोले ने, संगीत कौशिक और आकाश का।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए हिमेश रेशमिया का गाया और उन्हीं का संगीतबद्ध किया सनम तेरी कसम फिल्म का गीत, वो लिखे हैं समीर अंजान ने।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं मनोज मुंतशिर का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज सुबिन नौटियाल की फिल्म का नाम काबिल।

ये थे जुबिन नौटियाल फिल्म काबिल में। अब सुनिए जसलीन रॉयल, हर्षदीप कौर और सिद्धार्थ महादेवन को फिल्म बार बार देखो में, बोल आदित्य शर्मा के संगीत जसलीन रॉयल का, और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ

0: 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।

0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास

0: नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि

0: आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव ने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस।

धरती कहे पुकार के। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, रचनाकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

0: नाचो
1: छाया गीत हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं
0: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
1: याद रहे ये वो कैप्सूल है जो धुनों को आवाज को और यादों को जी

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अब सुनिए मोहम्मद रफी को फिल्म बहू बेगम में। साहिर लुधियानवी के लिए इस गीत की धुन बनाई है रोशन ने।

लीजिए सुनिए लक्ष्मीपांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे। जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिले।

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाज।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। मतलब कब बात बोलूं साहब?

0: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएं।

0: वक्त की हेरा फेरी है और वक्त की हेरा फेरी।
1: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
2: सिकंदर का
3: मैं आऊं विशाल।
2: पंडित जी शुरू कीजिए।
4: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
2: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सो रहा हूँ।
4: वस्त्र कंधे पर रख लिया हनुमान।
3: सिकंदर क्या हो गया? कुछ हुआ मेरे यार? जरा सी झड़प हो गई। कुछ हुई? मैं कुछ हुई?
5: मैं बताती हूँ।
3: नहीं,
5: दिला ने मुझे उठा कर लिया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता।
3: बस बस करो मेहन साहब। मेहन साहब क्या काम ना है तेरे मेहन साहब? अच्छे से तू
5: नहीं मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेहन साहब को
3: करता।
5: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो। आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
3: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या?
1: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
5: तुम?
6: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
7: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती। अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म

कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है, एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989, प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

वो कहानियाँ जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियाँ जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

श्रोताओं नमस्कार। छाया गीत के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। बचपन का साथ छूटा तो मन में एक आस ने घेरा डाला, कोई आएगा दूर देश से लेकर सपनों का उजियारा, वो आएगा तो संग लाएगा एक अनोखा जादू, उसकी नजरों के सामने न जाने कैसे होगा अपने दिल पर काबू। झूम उठेंगे रात दिन खुशियां आंखों से छलके, न खो जाएं कहीं मुझसे मेरे ये सुहाने सपने, ये सोचकर ही तो बंद कर ली हैं खुशी से अपने पलकें।

देखो ना, वो दूर से बहती आई हवा लिए आई है सौंधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आहट तो कभी गूंजती है मन में एक धुन। लगता है देखे बिना ही मेरे मन ने उन्हें ही लिया है चुन। सखियां सहेलियां अब बनाने लगी हैं बातें, इधर मैंने भी हथेलियों पर सजा ली हैं सारी रातें। पर इस खजाने में बची हैं चंद रात और मुट्ठी भर सपना। तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ इन्हें बनाकर दिल से अपना।

आखिर हुआ इंतजार खत्म और आ ही गया वो चितचोर। वो देखता है गांव की गलियां और हम निहारे बस उसकी ओर। कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपने जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को। होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज लांघते हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। हुआ वही जिसका ना अंदेशा था ना खबर, क्या कभी परदेसी बसे हैं इस दिल के नगर। परदेसी का ना कोई ठौर ना ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के इस खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब चुकाना। भीगती पलकें भीगते जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे उसके भी हालात।

दिल का ये मेल कोई आसान काम नहीं, जिसने दिया दुख लेते हैं उसका नाम ही। भीगे आंचल, बिखरा काजल, सूखे होंठ, सामने तू है सब कुछ, अब किससे कैसी ओट। छुप पाया है क्या चांद चांदनी से कभी, हमारे होंठों पर भी तो सजे हैं अब तक गीत वही। वो हो दूर तो क्या, मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम, सुबह शाम दिन तमाम।

0: ढलती जाए रात।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध